FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की

बात की तिथि तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए अगले प्रसारण की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद

0: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। गुरुवर को नमन आज की वंदना।

हे गुरुवर, आपकी ही कृपा से जीव मात्र को जड़ चेतन में हर प्रकृति के रूप में ईश्वर का आभास होता है और उनका ही दर्शन होता है। और जब आती जाती हर सांस के साथ आपके नाम का सुमिरन होता है तो

आपका ही नाम सत्य है, हे गुरुवर हम पर कृपा करें, दास आपकी कृपा का पात्र हो ऐसी ही कृपा बने।

हे गुरुवर, बस आपके चरणों में कोटि नमन है वो, और लगन लगी रहे नाम सुमिरन की।

0: आज के वंदना कार्यक्रम में आपने चित्रा रॉय, जगजीत सिंह, अनुराधा पौडवाल और डॉक्टर आंशुना सक्सेना, नरेश मल्होत्रा के स्वर में कुछ भक्तिपरक रचनाएं सुनी। इसी के साथ आज का चिंतन बिंदु कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु में आज का चिंतन विचार है गुरु महिमा। आलेख वाचन चैतन्य कृष्णाश्रय का।
1: प्रत्येक जीव को, जीव मात्र को एक अनजानी राह पर जाना पड़ता है। न पता है, न ठिकाना है। जाना पड़ेगा ही तो फिर कोई सहारा चाहिए। चाहे उसे हम यह मानकर चलें कि ये संसार भवसागर है, मझधार हैं इसमें तूफान हैं, और इन सारे संकटों से बचकर हमको निकलना होगा, और चाहे हम यह मानकर चलें कि यह संसार एक खतरनाक जंगल है जिसमें बहुत सारे चोर, उचक्के, लुटेरे, डकैत, बदमाश, सांप, बिच्छू सभी तो हैं, और उनके बीच में रहकर और उनसे बचकर अपने आप को आगे की तरफ जाना होगा, जाना ही होगा, कोई इसके बचाव का उपाय नहीं है। तो सहारा चाहिए, और शरीर किसी का सहारा नहीं बन सकता। शरीर जैसे हमारा है वैसे ही हमारे गुरुदेव का है। हो सकता है कि शिष्य अपने गुरुदेव से कहीं आगे समृद्धि में, मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, ऐश्वर्य में, रूप रंग में, ज्ञान विज्ञान में आगे पहुंच गया हो, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए शरीर नहीं, अभी जो हमने पूजा की, अभी जो अर्चना की पुष्पहार के द्वारा श्री गुरुदेव के चरणों में चरणामृत लेकर

0: अपने जीवन का जो सौभाग्य माना। यह सारा कुछ इसलिए है क्योंकि शरीर ही तो है हमारे सामने हमारे गुरुदेव का, और अगर कोई पूछे गोविंद का पता क्या है तो गोविंद का तो कोई पता ठिकाना है नहीं, इसलिए गोविंद का कोई पता खोजना हो तो गुरुदेव के चरणों में माथा झुका देने से बढ़कर कोई दूसरा पता नहीं है। ये गुरु जी जाने हमारे, ये हमारे गुरुदेव जाने कि गोविंद कहाँ बैठे हैं, गोविंद का क्या रूप रंग है, उनका कैसा है। हमारे जीवन की संपूर्ण यात्रा का लक्ष्य तो हमारे गुरुदेव के चरणों में हमारा श्रद्धा और समर्पण से, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वह भी जो हमारे गुरुदेव हैं, शरीर तो सभी के हैं ना, इसलिए शरीर को प्रणाम नहीं है, शरीर को नमन नहीं है, शरीर तो मात्र प्रतीक है। गुरुदेव, गुरु का अर्थ एक भाव है, गुरु हमारी एक अवस्था है, गुरु हमारी एक स्थिति है, गुरु एक स्थिति का नाम है, गुरु एक भाव दशा का नाम है, गुरु शरीर का नाम नहीं है। और इसलिए जब गुरुदेव के चरणों में एक शरीर को जब हम श्रद्धा समर्पण पूर्वक माल्यार्पण करते हैं और माथा झुकाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तो हमारे अंतःकरण की जो स्थिति है वो प्रकट हो जाती है। उसके ऊपर जितना भी गर्द गुबार भरा है, उसके आसपास जितने भी कांटे हैं और न जाने कितने कंकड़ पत्थर हैं, न जाने कितनी विकृतियां हैं, वो सारी की सारी धुल जाती हैं, सारी की सारी मिट जाती हैं, सब कुछ निर्मल शुद्ध और आनंदमय हो जाता है केवल गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुका देने मात्र से।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, गुरु महिमा था आज का चिंतन, आलेख वाचन चैतन्य कृष्ण का था। इसी के साथ चिंतन बिंदु कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का है, संगीतकार है सतीश भाटिया।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का था। संगीतकार थे सतीश भाटिया। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय रहेगा भूमि की उर्वरता बढ़ाने के उपाय। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। साथ ही लेंगे श्रोता आनंद कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का प्रातः सात बजे कर 31 मिनट पर। आज आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, इसके अंतर्गत सुनेंगे विशेष कार्यक्रम गुरु पर्व पर गुरु शरणानंद जी के महाराज के विचार। दिन में 9 बजे हिंदी वार्ता क्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर रामनिवास शर्मा अधीर से गुरु पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व, इस विषय पर ये वार्ता। प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा, आज का विषय वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आलेख वाचन रहेगा हिमांशु नामा का। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का खास प्रोग्राम ब्रज दर्पण, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मुड़िया पूर्णा मेले पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे राजेश कुमार शर्मा का लिखा रूपक गुरु चंदन त्रिलोक है गुरु अमृत की खान, वाचन संजय सारस्वत और दुर्गेश भास्कर का रहेगा। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत बात और SMS। दिन में 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलाकार होंगे संपत लाल जोशी, आप सुनेंगे इनसे लावनी। मैंने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक दिन में 1:15 पर। चर्चा का विषय गुरु का जीवन में महत्व, इस विषय पर यह चर्चा। बच्चों के स्क्रीन टाइम और डिजिटल आदतों में अभिभावकों की जो भूमिका है उस विषय पर चर्चा। साथ ही सुनेंगे आप मीरा शास्त्री से वार्ता गुरु पर्व और उसका महत्व। दिन में 2:30 पर सुनेंगे आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और गुरु पूर्णिमा। साथ ही सुनेंगे आप जल की गुरु दक्षिणा, आलेख गोपाल सक्सेना का रहेगा, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। चर्चा का विषय रहेगा पशु पोषण में खनिज लवण, साथ ही खेतों में जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक, इस विषय पर चर्चा। डॉक्टर धनराज शर्मा से सुनेंगे आप वार्ता, बरसाती सब्जियों की खेती में समस्याएं और समाधान, इस विषय पर यह वार्ता। समय संध्या 6:15। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। इसके अंतर्गत डॉक्टर नीता सिंह से आप सुनेंगे ब्रजवार्ता, ब्रज में गुरु पूर्णिमा को महत्व। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। शाम सुहानी, जी हाँ, संध्या 7:31 पर सुनेंगे आप ये कार्यक्रम। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय भूमि की उर्वरता बढ़ाने के उपाय, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, किसी भी खेत से लगातार फसल लेते रहेंगे तो उस खेत की उर्वरता उस स्थिति में कम हो जाएगी जब आप खेत में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे। सौभाग्य से मिट्टी में पोषक तत्वों का अथाह भंडार है, लेकिन बिना कोई उर्वरक प्रयोग करते रहने से भूमि में पोषक तत्वों की कमी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि धान गेहूं की फसल द्वारा एक वर्ष में एक हेक्टेयर क्षेत्र से 250 से 300 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 200 से 300 किलोग्राम पोटास खींच लिया जाता है। यह मात्रा अलग अलग फसलों की भिन्न भिन्न रहती है, इसलिए एक दो वर्ष में अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिससे ये ज्ञात हो सके कि अमुक खेत में कितना उर्वरक देना है। किसी भी खेत में बिना उर्वरक प्रयोग किए फसल लेने से एक दो साल मिट्टी की उर्वरता का पता नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद फसल का उत्पादन कम होने लगता है। हमारे किसान भाई मुख्य पोषक तत्व एनपीके का तो प्रयोग अवश्य करते हैं, लेकिन सूक्ष्म तत्वों का वे प्रयोग नहीं करते, जिससे उत्पादन में गिरावट आना लाजमी बात है। साथ ही फसल विभिन्न रोगों के कुचक्र में भी आ जाती है। आज हमारे यहाँ की जमीनों में सूक्ष्म पोषक तत्व जस्ते की कमी काफ़ी देखने को मिल रही है, तभी तो धान की फसल के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। उसी प्रकार तिलहनी फसलों के लिए गंधक वाले उर्वरक अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारी बातचीत का आज मुख्य विषय है मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जाए। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जैव खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें प्रमुख रूप से सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, इनको अपने खेतों में आप अवश्य प्रयोग करें। इनसे प्रमुख पोषक तत्वों के अलावा जो दूसरे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वे भी इन खादों के माध्यम से मिट्टी को मिल जाते हैं।

0: जिससे मिट्टी की उत्पादकता गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैव खादों का प्रयोग नियमित रूप से किया जाए। और दूसरी बात यह है कि फसल चक्र पर विशेष ध्यान देने की आजकल ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप गेहूं धान की फसल ही लगातार लेते रहें, अपने खेत में दलहनी फसलों का भी समावेश करें, तभी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बरकरार रह पाएंगे। ढालू खेत है, मिट्टी का कटाव होता है, उर्वरता बह करके नष्ट हो जाती है। तो इसलिए भूमि संरक्षण प्रक्रिया को अपनाएं, मेड़बंदी करें और खेत को समतल बनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था भूमि की उर्वरता बढ़ाने के उपाय। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सरस्वत। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: छात्राणां विरुद्धं किमपि कठोरनिर्णयं न कर्तव्यमिति निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षापत्रप्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्याङ्कनं कृत्वा पश्चिमबङ्गालप्रशासनेन विरोधप्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिन्दरकौर महिलानाम् एकोनसप्तति किलोग्रामभारवर्गे रजतपदकं प्राप्तवती। अपरञ्च भारतीय मुष्टियोद्धा एम् जादुमणिसिंहः ग्लास्गोनगरे पुरुषाणां पञ्चपञ्चाशत् किलोग्रामभारवर्गे प्रागुपान्त्यचक्रे मुआले म्वेङ्गो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्यपदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लीजिए सुनिए भूले बिसरे गीत का ये पहला गीत, फिल्म नागिन से। गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत हेमंत कुमार का, आवाज़ लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को फिल्म नागिन में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। ये अगला गीत फिल्म बूट पॉलिश से, आवाज़ें तलत महमूद और आशा भोसले की, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का।

तलत महमूद, आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म बूट पॉलिश में। इस गीत के गीतकार शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का था। और आइए सुने सत्येंद्र का लिखा गीत, संगीत रोशन का, आवाज़ इस गीत में राजकुमारी की, और ये गीत लिया फिल्म नौबहार से।

चपल नयन तप लादिनी चमके चंद्र कोर सी लच लच लचके अधर धरत पग धरनी धरत इन नाचत है ब्रज नारी सतत सतीदा दिखे सतत सतीदा दिखे सतत सतीदा दिखे।

फिल्म नौबहार में अभी आपने सुना राजकुमारी को। गीत सतेंद्र और साथियों का, संगीत था रोशन का। और आइए सुने इस गीत में शमशाद बेगम को, फिल्म नगमा से ये गीत, गीत जय नक्श का, संगीत नौशाद का।

नगमा में गीत चिनक्ष का था, संगीत नौशाद का। और आइए सुने कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में जगजीत कौर नूरजहां और शमशाद बेगम को फिल्म हीर रांझा में, गीत कैफी आजमी का, संगीत मदन मोहन का।

जगजीत कौर, नूरजहां और शमशाद बेगम को अभी आपने सुना फिल्म हीर रांझा में। इस गीत को लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया मदन मोहन ने। इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर दिया विशेष बल। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है यह विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर मांगा जवाब। और गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं प्रभावी कदम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कल अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भावी कार्ययोजना की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: यह बैठक विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करने पर केंद्रित रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार के भीतर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार दोनों प्रकार की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एकीकृत एवं प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सकें। जन केंद्रित सुशासन का महत्व बतलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक ही सदैव शासन व्यवस्था के केंद्र में रहने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि हर निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर कल लोकसभा में चर्चा हुई। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के

0: विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल कई बार बाधित हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल नीट मुद्दे पर प्रदर्शन के मामले में गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्यवागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।
2: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। ये राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4,000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
0: प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
3: सनातन दर्शन विचार एवं संस्कृति में गुरु शिष्य के रिश्ते को प्रतिष्ठित करने वाला पावन पर्व गुरु पूर्णिमा गोरक्ष पीठ के लिए विशेष होता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वह अवसर होता है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर शिवावतार एवं नाथ पंथ के आदि गुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने पूर्ववर्ती गुरुजन की पूजन स्तुति करते हैं। इसके बाद वह अपने शिष्यों और गोरक्ष पीठ के श्रद्धालुओं को स्नेहाशीष से अभिसंचित करते हैं। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: आज से ही भारतीय जनता पार्टी वाराणसी से देशव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। इसमें मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा।

मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन लागू किया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर दिया विशेष बल। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है यह विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर मांगा जवाब। और गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं प्रभावी कदम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज माधुरी।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

कार्यक्रम ब्रज माधुरी सुनवे वारे सभी भैया बहनन को अनुराग पांडे की जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। साथी साथ भैयाओं, आज आप सबन को गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हमारी नमन, सभी ऐसे गुरुजनन के चरणन में हमारो नमन जिनते हमारो जे ब्रज महिमा मंडित है रहे हो। भैयाओं, आप तो जानो हो कि ये दिना, जी हाँ, गुरु पूर्णिमा के या दिना दूर दूर से भक्त या ब्रज में पधारे हैं और मुड़िया पूना को जो मेला हुई करे है या ब्रज में या समय गिरिराजी पधार के सब पर पर पर कम्बा लगावें और यहाँ के जो ठाकुर द्वारे हैं बिन में जाए के शीश नमामें। मुड़िया पूना को जी मेरा और गुरु पूर्णिमा को महत्व। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा के या दिना लोग दीक्षित हुए करे हैं अपने गुरुअंते, गुरुअंत के दिखाए मार्ग पे चले हैं। साथ ही साथ भैयाओ, हमारे यह ब्रज की अनूठी परंपरा है। जी जितेऊ हमारे यहाँ ब्रज में आश्रम हैं, ठाकुर जी के जो धाम हैं बिन में हमारी गुरु शिष्य परंपरा है और वह परंपरा में गुरु के चरणन में बैठ के भक्त और शिष्य अपने इनको कृतार्थ माने हैं। ऐसी कई ब्रज में पीठे हैं, ऐसे धाम हैं, ऐसे स्थल हैं जिन पे आजाओ मेरा सो जुटे हैं। साथ ही साथ जब कबू श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, शिष्य यहाँ पहुँचे हैं तो बिन की समस्यान को, बिन की पीड़ान को, बिन की विषमताओं को समाधान यहाँ सहज ही मिल जाए है। ऐसी महिमा है ब्रज के इन ठाकुर द्वारेन की, ऐसी महिमा है या ब्रज के गुरुवन की।

इत्यादि नामों से अभियुक्त किए जातो। पहले संचार के साधन इतने हेनाएं, इतने पुल, इतनी सड़कें, इतनी गाड़ी सबको उपलब्ध नहीं ही, वर्षा पर्याप्त होती, जंगल पर्याप्त है, तो मशक, दंश, कीट, सर्प इत्यादि को तो प्रकोप होतो ही होतो, मार्ग भी कीचड़ युक्त होते और नदी नाला के कारण आनो जानो सुगम ना होतो। या दृष्टि से ऐसे संतन को जो काऊ गांव में एक रात ना ठहरे, काऊ गांव में तीन दिना से अधिक ना ठहरे, सप्तपुरी में सात दिना से अधिक ना ठहरते, वो भी चातुर्मास्य में एक महीने का एक स्थल पर निवास करते। भगवान सूर्य आठ महीने तक धरती से रसाकर्षण करते हैं और इन चार महीनों में वो ऊपर से नीचे गिरा के प्रदान करते हैं, तो ये संप्रदान को मास है। सूर्य भी प्रदान करे हैं और सदगुरु भी। या मुड़िया पूनों से चार दिना पहले जो एकादशी गई वह देवशयनी एकादशी कहे। देवशयनी एकादशी को तात्पर्य है कि देवता इन तिथि से विश्राम करें। छह महीना को दिन और छह महीना को रात, तो अभी भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में देखने को मिले ही मिले। तो इसी प्रकार ये देवशयनी एकादशी से लेके देव प्रबोधिनी एकादशी तक को समय विश्राम को समय हुए है, परिव्रजन से रुकने को समय हुए है, एक स्थल पर रह करके साधना करने को समय हुए। तो यामे पहले चातुर्मास्य इत्यादि यज्ञ भी अमुक प्रकार के किए जाते थे, प्रायः करके संत एक स्थल पर रह करके अनुष्ठान भी संपादित करते थे और एक स्थान पर रहने के कारण गुरु और शिष्य का परस्पर अध्ययन और अध्यापन का भी मार्ग सुकर हो जाता था। इसलिए चातुर्मास्य में कोई न कोई एक ग्रंथ का आश्रय करके गुरु और शिष्य परस्पर संप्रदान और आदान किया करते थे। तो चातुर्मास में एक स्थल पर संत रहता है, वो अपनी अनुभूति, वो अपना ज्ञान आए हुए शिष्य को प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व आचार्य का, गुरु का पूजन करना चाहिए श्रद्धा के आपादन के लिए, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आदव श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा का आपादन करने के हेतु अथवा अपनी श्रद्धा प्रकट करने के निमित्त गुरु पूजन की परंपरा इस पूर्णिमा को मनाएंगे। तो इस दिन अपने गुरु जी का पूजन किया जाता है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास जी का पूजन भी होता है। तो गुरु पूजन से तात्पर्य गुरु का उत्कर्ष बढ़ाना नहीं है, गुरु तो परिपूर्ण है, उसका उत्कर्ष क्या बढ़ेगा, जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया है उसे कोई कुछ दे नहीं सकता है। गुरु का पूजन अपने लिए होता है, शिष्य के लिए होता है। शिष्य के अंतःकरण में गुरु की प्रति भाव है, उस भाव को प्रकट करने के लिए केवल तीन साधन है, या तो कोई वस्तु है, या फिर कोई क्रिया है, या फिर कोई शब्द है। शब्द के द्वारा गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।

गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इन शब्दों के साथ तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें इत्यादि इन शब्दों के द्वारा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु और वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा आदि प्रकार के बहुत से श्रद्धा को प्रकट करने वाले, गुरु के प्रति समर्पण प्रकट करने वाले श्लोक हैं या सामान्य बाबा आपने बड़ी कृपा की नी मोए अपनी शरण में ले लियो वरना मैं कहाँ भटक तो ये वाणी के द्वारा अपनी श्रद्धा प्रकट करना, क्रिया के द्वारा हाथ जोड़ करके प्रणाम करके या गुरु को साष्टांग प्रणाम किया जाता है, आठों अंगों से गुरु को और इष्ट को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। तो भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, इस अष्टधा प्रकृति से अपने को ऊपर उठाने के लिए गुरु के चरणों में प्रणाम किया जाता है। तो ये प्रणाम अभिमान की निवृत्ति के निमित्त है, हमारे अभिमान की निवृत्ति हो, हम में नम्रता का आपादन हो, तो ये नम्र स्थल के ऊपर किसी वस्तु को आने में प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर गड्ढा है तो वहाँ जल अपने आप सिमट करके बढ़ जाएगा, अगर ऊंचा है तो वहाँ से जल अपने आप सरक जाएगा। तो अभिमानी के पास से ज्ञान अपने आप लुढ़क के चला जाता है और नम्र व्यक्ति के पास गुण अपने आप बह करके चला आता है। तो इसलिए अभिमान की निवृत्ति के लिए योग्यता की अधिकारती का आपादन के निमित्त दंडवत की जाती है, प्रणाम किया जाता है सेवा की, ये क्रिया के द्वारा हो गया। वस्तु के द्वारा श्रद्धा प्रकट करनी है, कोई एक फूल ले आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जो हमको प्रिय लगती है ऐसी वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं कि यद्यपि ये वस्तु हमको प्रिय है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जान देने वाले लोग भी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे दो दो चार चार पैसे इकट्ठा करके अपने अत्यंत प्रिय वस्तु को गुरु के चरणों में इसलिए अर्पित करते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान ये सांसारिक उपलब्धियों के लिए तो हम जान अवश्य देते हैं लेकिन आप इनसे भी ऊपर हैं। तो ये भाव प्रकट करने के लिए जो अपनी प्रिय वस्तु है प्रतीक के रूप में पुष्प पत्ती जल इत्यादि के रूप में, चंदन अक्षत आदि के रूप में अर्पित की जाती है। तो गुरु पूजा के दिन जो स्तुति की जाती है, जो साष्टांग प्रणाम किया जाता है, जो वस्तु आदि अर्पित की जाती हैं, ये गुरु के लिए नहीं होकर के वस्तुतः शिष्य के लिए होते हैं। शिष्य अपनी भावना प्रकट करने के निमित्त इनका आश्रय लेता है। तो यामे पहले चातुर्मास्य इत्यादि यज्ञ भी अमुक प्रकार के किए जाते थे, प्रायः करके संत एक स्थल पर रह करके अनुष्ठान भी संपादित करते थे और एक स्थान पर रहने के कारण गुरु और शिष्य का परस्पर अध्ययन और अध्यापन का भी मार्ग सुकर हो जाता था। इसलिए चातुर्मास्य में कोई न कोई एक ग्रंथ का आश्रय करके गुरु और शिष्य परस्पर संप्रदान और आदान किया करते थे। तो चातुर्मास में एक स्थल पर संत रहता है, वो अपनी अनुभूति, वो अपना ज्ञान आए हुए शिष्य को प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व आचार्य का गुरु का पूजन करना चाहिए श्रद्धा के आपादन के लिए, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आदौ श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा का आपादन करने के हेतु अथवा अपनी श्रद्धा प्रकट करने के निमित्त गुरु पूजन की परंपरा इस पूर्णिमा को मनाई गई। तो इस दिन अपने गुरु जी का पूजन किया जाता है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास जी का पूजन भी होता है। तो गुरु पूजन से तात्पर्य गुरु का उत्कर्ष बढ़ाना नहीं है, गुरु तो परिपूर्ण है, उसका उत्कर्ष क्या बढ़ेगा, जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया है उसे कोई कुछ दे नहीं।

0: होता है। गुरु का पूजन अपने लिए होता है, शिष्य के लिए होता है। शिष्य के अंतःकरण में गुरु के प्रति भाव है, उस भाव को प्रकट करने के लिए केवल तीन साधन हैं, या तो कोई वस्तु है, या फिर कोई क्रिया है, या फिर कोई शब्द है। शब्द के द्वारा गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इन शब्दों के साथ त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव इत्यादि इन शब्दों के द्वारा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा आदि प्रकार के बहुत से श्रद्धा को प्रकट करने वाले, गुरु के प्रति समर्पण प्रकट करने वाले श्लोक हैं। या सामान्य बाबा आपने बड़ी कृपा की नी, मोए अपनी शरण में ले लियो, वरना मैं कहाँ भटकतो, तो ये वाणी के द्वारा अपनी श्रद्धा प्रकट करना, क्रिया के द्वारा हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, या गुरु को साष्टांग प्रणाम किया जाता है, आठों अंगों से गुरु को और इष्ट को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। तो भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति से अपने को ऊपर उठाने के लिए गुरु के चरणों में प्रणाम किया जाता है। तो ये प्रणाम अभिमान की निवृत्ति के निमित्त है। हमारे अभिमान की निवृत्ति हो, हम में नम्रता का आपादन हो, तो ये नम्र स्थल के ऊपर किसी वस्तु को आने में प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर गड्ढा है तो वहाँ जल अपने आप सिमट करके बढ़ जाएगा, अगर ऊंचा है तो वहाँ से जल अपने आप सरक जाएगा। तो अभिमानी के पास से ज्ञान अपने आप लुढ़क के चला जाता है, और नम्र व्यक्ति के पास गुण अपने आप बह करके चला आता है। तो इसलिए अभिमान की निवृत्ति के लिए योग्यता की अधिकारते के आपादन के निमित्त दंडवत की जाती है, प्रणाम किया जाता है सेवा की। ये क्रिया के द्वारा हो गया। वस्तु के द्वारा श्रद्धा प्रकट करनी है, कोई एक फूल ले आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जो हमको प्रिय लगती है, ऐसी वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं। यद्यपि ये वस्तु हमको प्रिय है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जान देने वाले लोग भी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे दो दो चार चार पैसे इकट्ठा करके अपने अत्यंत प्रिय वस्तु को गुरु के चरणों में इसलिए अर्पित करते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान, ये सांसारिक उपलब्धियों के लिए तो हम जान अवश्य देते हैं, लेकिन आप इनसे भी ऊपर हैं। तो ये भाव प्रकट करने के लिए जो अपनी प्रिय वस्तु है, प्रतीक के रूप में पुष्प पत्ती जल इत्यादि के रूप में, चंदन अक्षत आदि के रूप में अर्पित की जाती है। तो गुरु पूजा के दिन जो स्तुति की जाती है, जो साष्टांग प्रणाम किया जाता है, जो वस्तु आदि अर्पित की जाती हैं, ये गुरु के लिए नहीं होकर के वस्तुतः शिष्य के लिए होते हैं। शिष्य अपनी भावना प्रकट करने के निमित्त इनका आश्रय लेता है। वस्तुएं तो हैं, यदि श्रद्धा नहीं है तो इनके आपादन का कोई महत्व नहीं है। कोई शिष्य ऐसा है जिसके पास साधन नहीं है लेकिन श्रद्धा परिपूर्ण है, तो केवल एक बार प्रणाम भी यथेष्ट होता है। तो आज अपने में अधिकारिता की प्राप्ति के लिए पूजन होता है, अधिकार प्राप्त हो गया तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजन होता है, और ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई है तो इसके अनंतर गुरु नई विशिष्ट या गुरु शिष्य का भेद न होने पर भी केवल कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए भी गुरु पूजन किया जाता है कि सतगुरु आज आपकी कृपा से हम इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हमको सब कुछ आपके रूप में दिखाई पड़ता है या अपना रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन तो भी ये दृष्टि आपकी कृपा से मिली है। यद्यपि हमारे आप में अब भेद नहीं है गुरु नई विशिष्य की स्थिति, लेकिन तो भी जिनकी कृपा से ये हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको वंदन करते हैं।
1: भैया अभी आपने सुने जाने गुरु पर्व पे गुरु शरणानंद जी महाराज के विचार, और यही के साथ आज को गुरु ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक

0: पंचायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी

0: का और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए।

0: risk in great fiction writing, reports The Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shubhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action, agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes the first Indian to win silver medal in the men's 10,000-meter race at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: FM 102.2 MHz par आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि.
3: मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं. इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें.
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें.
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
5: क्या बात है, बड़े दिनों बाद.
6: हाय यार. अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा.
5: अरे वही अपना 60 रुपया.
6: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है.
5: तो देख, दो तरीके हैं. पहला, आधी दाढ़ी करा ले.
6: और दूसरा.
5: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से.
6: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया.
5: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना.
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान.
8: हर लेन देन अब है आसान.
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि. कार्यक्रम का ये गीत 1920 इवेलिटन फिल्म से. आवाज इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर की, गीत शकील आजमी का, संगीत चित्रंजन भट्ट का.

गीत शकील आज़मी का, संगीत चित्रंजन भट्ट का और महालक्ष्मी के स्वर में अभी आपने सुना। फिल्म 1920 इवल रिटर्न से ये गीत। और आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत आज के इस गीतांजलि क्रम में, फिल्म एक दूजे के लिए। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा आवाज़ें इस गीत में लता मंगेशकर, अनूप जलोटा की और गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म एक दूजे के लिए। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, और आई सुने गीतांजलि क्रम में ये एक और प्यारा सा गीत, फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा, आवाज़ इस गीत में सचित टंडन और परंपरा ठाकुर की। गीत गरमा वहाल का।

सचिन टंडन परंपरा ठाकुर को अभी आपने सुना फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और यही सुने फिल्म तुम बिन से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम को फिल्म तुम बिन में। गीत फैज अनवर का था। और आइए सुने गीतांजलि के क्रम में ये गीत फिल्म मोहब्बतें से, आवाजें उदित नारायण और लता मंगेशकर की।

गीत आनंद बख्शी का, संगीत जतिन ललित का। आवाज़ दे रहे थे गीत को उदित नारायण और लता मंगेशकर फिल्म मोहब्बतें के लिए। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न

0: है FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदी वार्ता क्रम में। आज का विषय है गुरु पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व। इस विषय पर आज वार्ताकार है डॉक्टर राम निवास शर्मा अधीर।
1: गुरु पूर्णिमा पर विचार करने से पूर्व मेरा ध्यान गुरु शब्द पर जाता है, अतः मैं आज की इस वार्ता का प्रारंभ यहीं से करना चाहता हूँ। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जब से इस भूमंडल पर किसी भी जीव का जन्म हुआ है, तभी से यह प्रक्रिया भी चल रही है। पशु पक्षी भी चलना, उड़ना, नीड़ का निर्माण आदि सीखते हैं। मनुष्य एक बुद्ध संपन्न प्राणी है, वह तो मानवीय सृष्टि के आविर्भाव के समय से ही इस प्रक्रिया में संलग्न है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक शिखरों के उच्चतम बिंदु को छू लेने की उसकी अभीप्सा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। इस सीखने की प्रक्रिया के दो छोर होते हैं, एक गुरु जो सिखाता है और दूसरा शिष्य जो सीखता है। मनीषियों ने अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को ही प्रकाश माना है। इस प्रकार अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु ही है। गुरु ही तमसो मा ज्योतिर्गमय के वेद वाक्य को चरितार्थ करता है। गुरु शब्द में दो वर्ण है, गु और रू। इनमें गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। हमारे शास्त्र भी गुरु शब्द के इसी अर्थ का अनुमोदन करते हैं। गुशब्दस्तु अंधकारे स्यात् रुशब्दस्तन निरोधकृत अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। इसीलिए कहा गया है कि हमारी ज्योतिहीन आँखों को जिन गुरुदेव ने अपनी ज्ञानांजन की सलाई से खोल दिया, उन्हें सादर नमस्कार है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु के गुणों का वर्णन करते हुए शारदा तिलक में कहा गया है कि गुरु शुद्ध कुल में जन्मा हो, शुद्ध भावों वाला हो, जितेंद्रिय हो, सभी वेदों के सार को जानने वाला हो और सभी शास्त्रों के अर्थ को तत्वतः जानता हो। अर्थात गुरु का ज्ञान के प्रकाश से युक्त होना आवश्यक है। शास्त्र अर्थात विज्ञान ही वास्तविक नेत्र हैं। जिसके पास वो नेत्र नहीं है, वो अंधा है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सः। कहने का आशय ये है कि गुरु को अंधा अर्थात ज्ञान शून्य नहीं होना चाहिए। संत कबीरदास ने भी कहा है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोन्यों कूप पड़ंत। हमारे शास्त्रों में गुरु के साथ साथ शिष्य के भी कर्तव्य सुझाए गए हैं। कहा गया है कि गुरु के आज्ञा पालन में यदि प्राणों का भी उत्सर्ग करना पड़े तो कर देना चाहिए। निजी कार्यों को छोड़कर सदा गुरु के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। लगभग सभी धर्मों व संप्रदायों में गुरु की महत्ता का इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है। सिख धर्म में तो गुरु परंपरा को विराम देकर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। जैन और बौद्ध संप्रदायों में श्रमण, मुनि, भंते आदि गुरुपद के ही अधिकारी हैं। गुरु को प्रायः पिता तुल्य माना जाता है। ईसाई तो चर्च के अधिष्ठाता अर्थात गुरु को फादर ही कहते हैं। इस्लाम में भी गुरु की महिमा कम नहीं है। सूफी संप्रदाय में गुरु को पीर या शेख कहा जाता है। इस संदर्भ में फारसी का एक शेर है, फिल फना फिल्लाह शेखां, फिल फना फिल्लाह रसूल, फिल फना फिल्लाह अल्लाह। अर्थात पहले तुम अपने शेख अर्थात गुरु पर कुर्बान हो, फिर हजरत मोहम्मद साहब पर कुर्बान हो और उसके बाद अल्लाह पर। लगभग वही बात जिसको कबीर साहब ने कहा था, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार। प्रश्न ये है कि इस आपाधापी के युग में कृत्रिम वेश विन्यास और भ्रामक विज्ञापनों के चलते सदगुरु की पहचान कैसे हो। इसी आशय का प्रश्न करने पर मथुरा के प्रख्यात धर्मगुरु भगवताचार्य श्रीमान राधाचरण शर्मा जी ने कहा था, जिसके सम्मुख आते ही इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, आत्मबल जगता है, सत्य ज्ञान और प्रेम के सुमन खिल जाते हैं, प्रसन्नता उमड़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, शांति का अनुभव होता है, वही सदगुरु है। गुरु पूर्णिमा के महत्व पर विचार करने से पूर्व पूर्णिमा की महत्ता को जान लेना समीचीन प्रतीत होता है। हमारे पंचांग के अनुसार पूर्णिमा पूर्णा तिथि है। मान्यता है कि इसमें किए गए सभी कार्य पूर्ण होते हैं।

हैं। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ प्रकाशित होते हैं। इस तिथि में जन्मे जातक में भी अपेक्षाकृत अधिक कलाएं अथवा गुण होते हैं। मुझे तो लगता है कि विधाता ने भी सद्गुरुओं, मनीषियों, शूरवीरों, श्रेष्ठ भक्तजनों आदि के जन्म के लिए पूर्णिमा तिथि को निर्धारित कर रखा है। यदि पूरे वर्ष के पंचांग पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि हर पूर्णिमा पर किसी न किसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। एक पूस का महीना इसका अपवाद है, वो तो विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए भी वर्जित है। श्रावणी पूर्णिमा को गायत्री जयंती का पर्व होता है। भाद्रपद पूर्णिमा को हम अमर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। आश्विन यानी क्वार की पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व होता है। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन की पूर्णिमा श्री विद्या तथा श्री अन्नपूर्णा जैसी शक्तियों का आविर्भाव दिवस है। इस बार ये तिथि 25 दिसंबर को होने के कारण प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस भी यही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम काल गणना के अनुसार रबीउल अव्वल की 12 तारीख भी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही पड़ रही है। अतः हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिवस ईद मिलादुल नबी भी उक्त तिथि को ही मनाया जाएगा, ऐसी संभावना है। वैसे भी हर चांद के महीने की 12 तारीख प्रायः पूर्णिमा को ही पड़ती है। मेरा विश्वास है कि हजरत मोहम्मद साहब का आविर्भाव जब भी हुआ होगा उस दिन पूर्णिमा रही होगी। इस बार महामना मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती भी अगहन पूर्णिमा को ही पड़ रही है। प्रतिवर्ष विश्व का लघु संग्रह प्रतीत होता है। जगह जगह भंडारों में शुद्ध खाद्य पदार्थों, स्वच्छ जल, चाय, शरबत आदि की व्यवस्था रहती है। यहाँ संपन्न भक्तों की उदारता और श्रद्धालुओं की भक्ति विह्वलता देखते ही बनती है। ये लक्खी मेला अब करोड़ी हो चुका है। इस विशाल मेले की संपूर्ण व्यवस्था कुछ स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से सामान्य तथा पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से संभालते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता के न्यायानुसार गुरु पूर्णिमा की भी महिमा अनंत है, जिसे इस लघु वार्ता में समेटा नहीं जा सकता। अतः इस महावाक्य से वार्ता को विराम।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ताक्रम है ये विशेष कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व। वार्ताकार थे डॉक्टर राम निवास शर्मा धीर। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विवेक कुमार का।
2: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 11 करोड़ 32 लाख की लागत से भव्य बुद्ध थीम पार्क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसके उद्घाटन की बात कही जा रही है। यह पार्क बोध वृक्ष, 3D गैलरी और लाइट एंड साउंड शो जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बौद्ध दर्शन का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा, जिससे कुशीनगर की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गौतम बुद्ध संग्रहालय के नजदीक विकसित इस पार्क को जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। आधुनिक तकनीक, आध्यात्मिक अनुभव और बौद्ध विरासत के अद्भुत संगम के रूप में विकसित यह थीम पार्क देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन, दर्शन और करुणा के संदेश से जोड़ने का नया माध्यम बनेगा। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज विकास खंड में जल जीवन मिशन के तहत जल चौपाल एवं जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता VP सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता एवं नियमितता के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया। ग्रामीणों ने यह बताया कि योजना के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जीवन शैली में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टेकुआटार में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि
3: बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
2: मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जनसभा को गोरखपुर के सांसद रवि किशन, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह, प्रदेश सरकार के कारागार व कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान तथा अन्य स्थानीय विधायकगण ने संबोधित किया। कुशीनगर जिले में वृक्षारोपण महाभियान के तहत बीते 12 जुलाई को जिले के विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 39 लाख से अधिक पौधरोपण किया गया। फाजिलनगर क्षेत्र में बौद्धकालीन कुकुत्था नदी के समीप वन विभाग की भूमि पर विशिष्ट वन की स्थापना की गई, जहां लगभग 17,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जिले में खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण अभियान के 8वें चरण का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मोबाइल वेटनरी यूनिट एवं बहुउद्देशीय सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 जुलाई से चलने वाला यह अभियान 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जिले में पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुशीनगर जिले में लगभग 1,73,000 से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल, आलेख है नरेंद्र प्रताप का।
4: जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के परिसर में प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार

को आयोजित होने वाले किसान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में कृषकों ने प्रतिभाग किया। पिछले दिनों जिले में मानसूनी बारिश के चलते जिले में पानी में डूबकर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मानसून के आगमन के साथ ही जनपद आजमगढ़ में नदियों, तालाबों, पोखरों, झीलों, नहरों एवं अन्य जलाशयों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डूबने की अनेक दुखद घटनाएं सामने आई हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं असावधानी, जलधाराओं की गहराई एवं तीव्र बहाव का सही अनुमान न लगा पाने तथा सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वो स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा जलाशयों के समीप विशेष सतर्कता बरतें। मानसून के समय में जगह जगह जलभराव, गंदे पानी और नालियों के कारण संक्रमण जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे निपटने के लिए जिले में गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जुलाई माह में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए संचारी रोगों से बचाव, स्वच्छता बनाए रखने तथा जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संयुक्त अभियान है जिसमें पंचायत विभाग साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग जागरूकता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। आजमगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले कुल 49 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विभाग भवन आजमगढ़ के सभागार में किया गया। मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने छात्राओं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला एवं बालिका कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। छात्राओं ने सम्मान प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अपने जीवन का प्रेरणादायी क्षण बताया तथा भविष्य में और अधिक मेहनत कर जनपद एवं प्रदेश का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात समूह सखियों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शिविर हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यशाला में विकासखंड अहिरौला, अतरौलिया, हरैया, लालगंज, मार्टिनगंज एवं मेहनगर की समूह सखियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शासन की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के संबंध में समूह सखियों को आवश्यक दिशा निर्देश एवं विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बना आने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसे न केवल महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रदेश सरकार नारी शक्ति को विकसित उत्तर प्रदेश की धुरी मानते हुए महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं समग्र सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं

0: को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को नई गति प्रदान कर रहा है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडिया
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय है वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आलेख वाचन हिमांशु नामक का।
4: हर दिन हमारा प्रदूषण के अनेक रूपों से सामना होता है। आज हम चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों में साधारण खांसी जुकाम से फेफड़ों के कैंसर जैसे रोग तक शामिल हैं। प्रदूषित वायु आंखों में जलन पैदा करती है। कुछ पदार्थ जैसे सीसा शरीर में जमा हो जाते हैं। बड़े शहरों में फेफड़ों के कैंसर की दर ग्रामीण क्षेत्रों से दुगनी है। इसका प्रमुख कारण प्रदूषित वायु है। वायु प्रदूषण का प्रभाव बड़ों की तुलना में बच्चों पर ज्यादा होता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, धूल, सिलिका और एस्बेस्टोस जैसे पदार्थ और गैसें प्रदूषण का कारण बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक दमघोटू गैस है। ये सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर रक्त में मिल जाती है। इससे हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता कम हो जाती है और कई अंगों को गंभीर क्षति पहुंचती है। कई बार सर्दियों के दिनों में बंद कमरों में चिमनियों का प्रयोग किया जाता है। इन चिमनियों में जलने वाले ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और बंद कमरे में सोने वाले मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए चिमनी का प्रयोग करते समय खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। अगर शरीर में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की सांद्रता अधिक हो तो फेफड़ों से रक्त स्त्राव हो सकता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कैंसर का कारण बनता है। इसमें मौजूद शीशे की मात्रा के कारण बच्चों के मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है। धूम्रपान करना भी एक तरह का वायु प्रदूषण है। जी हाँ, धूम्रपान करने वालों को तो नुकसान होता ही है, बल्कि उनके साथ रहने वालों को भी धुएं से कैंसर का खतरा होता है। इसलिए धूम्रपान से सदैव दूर रहना चाहिए। धूल के कणों से प्रदूषण की बात की जाए तो एस्बेस्टोस का नाम सबसे पहले सामने आता है। एस्बेस्टोस मकानों की छतें बनाने में, गाड़ियों के ब्रेक क्लच के किनारों को उष्मरोधी बनाने के काम में आता है। एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारी होती है। सिलिका युक्त चट्टानों से निकले धूल के कण शरीर में पहुंचकर सिलिकोसिस जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। खनन, पॉटरी उद्योगों, ग्रेनाइट की कटाई और बालू की खुदाई जैसे उद्योगों से जुड़े श्रमिकों को यह बीमारी होने का खतरा सर्वाधिक होता है। श्रमिकों में खांसी और सांस उखड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सिलिकोसिस के साथ अक्सर क्षय रोग भी हो जाता है। धूल के कणों से कई अन्य बीमारियां जैसे बेरेलियोसिस, बायोसिनोसिस मनुष्य की मृत्यु तक का कारण बनती हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो ये बीमारियां तो रुकेंगी ही, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। मनुष्य को अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाते हुए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने पर ध्यान देना होगा। जब हम प्रदूषण से इतने त्रस्त हैं, तो आने वाली पीढ़ियों की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना करना ही भयावह लगता है। हमें अपने साथ अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना होगा, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हम स्वस्थ और खुशहाल वातावरण अपनी भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय था वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आलेख वाचन इस विषय पर था हिमांशु नामा का। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी चलो मेरी फ्लाइट।

0: फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: लीजिए सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का खास प्रोग्राम ब्रज दर्पण। आज का कार्यक्रम लेके आए आपके बीच जितेंद्र सिंह।

ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज का दिन है गुरु को सम्मान देने का, गुरु को याद करने का, क्योंकि गुरु वो प्रकाश हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का दीप जलाते हैं। वे केवल हमें पढ़ाते ही नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेना, अनुशासन में रहना और अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ना भी सिखाते हैं। आज के समय में जानकारियां तो बहुत हैं, लेकिन सही दिशा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। तब गुरु की सीख ही हमें सही और गलत का अंतर समझाती है। हमारे माता पिता, शिक्षक, हमारे बड़े बुजुर्ग और जीवन के अनुभव, ये सभी किसी न किसी रूप में हमारे गुरु हैं। यदि हम उनकी सीख को अपने व्यवहार में उतार लें तो हमारा जीवन अधिक सार्थक, अनुशासित और सफल बन सकता है। अक्सर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस सफलता की पहली सीढ़ी बनने वाले अपने गुरुओं को याद करना भूल जाते हैं। वास्तव में सच्ची उपलब्धि वही है जिसमें अपने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता हमेशा बनी रहे। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा है, क्योंकि वो गुरु ही हैं जो हमें ज्ञान, विवेक और जीवन के उद्देश्य को समझाते हैं। गुरु का सम्मान केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन हमारे व्यवहार, विनम्रता और उनके बताए गए मार्ग पर चलने से प्रकट होनी चाहिए। तो आइए हम भी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ये संकल्प लें कि अपने जीवन में जिन जिन लोगों ने हमें जो कुछ भी सिखाया है, उन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। समय समय पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। गुरु का सम्मान केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि उनके दिए हुए संस्कारों को अपने जीवन में उतारने से होता है। इसलिए अपने गुरुओं का सम्मान करें, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन का वो प्रकाश हैं जो कि हमारे अंधकार को दूर करके हमें सफलता की राह दिखाते हैं।

0: श्रोताओं, आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम पर्व मुड़िया पूर्णिमा है। ब्रजभूमि में आज हर ओर राधे राधे और गिरिराज महाराज की जय के जयघोष गूंज रहे हैं। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव श्रद्धा और विश्वास के साथ गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मुड़िया पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा, समर्पण और सनातन संस्कृति की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। ये पर्व हमें आस्था के साथ साथ प्रेम, सद्भाव और मानवता का संदेश देता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 23 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जुलाई तक गिरिराज महाराज की पावन धरा गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुड़िया पूर्णिमा का हमारी सनातन संस्कृति में क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं गौड़ीय मठ मथुरा के महंत श्री भक्ति वेदांता माधवदास जी महाराज।
1: हरे कृष्णा। ये करीब 550 साल पहले हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक संत हुए, उनको ब्रज में बड़े बाबा कहते

थे, उनका नाम था श्री सनातन गोस्वामी। उनका नियम था प्रतिदिन वृंदावन से आके मथुरा, मथुरा से गोवर्धन, फिर परिक्रमा करके, फिर मथुरा में माधुगिरी करके वृंदावन जाते। सब वृंदावन में केवल जंगली जंगल था, कुछ था नहीं, इसलिए कुछ प्रसाद के लिए, भोजन के लिए मथुरा आना पड़ता था। ऐसे प्रतिदिन परिक्रमा करते, उम्र भी हो गया था। फिर एक दिन दोपहर के समय जेठ की महीना, ऊपर तप रही है, नीचे धरित्री तप रही है।

0: रही है, नीचे धरित्री तप रही है, बेहोशों के गिर पड़े। कृष्ण बलराम का रहा नहीं गया, वो लोग आ गए, अपने कपड़े से छतरी बना दिया और पानी दे करके हवा करने लगे। उनको स्पर्श दिया, उनका आँख खुली, देखते गदगद हो गए। बोले सनातन तुम्हारा उम्र हो गया, परिक्रम मत करो। बोले प्रभु मेरा धर्म मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तब क्या किया, बोले देखो कृष्ण बोले मैं अपने चरण चिन्ह पत्थर पर देता हूँ, लकुटी चिन्ह वंशी चिन्ह गोखुट का, इसको राधा दामोदर में रख करके चार बार परिक्रमा करने पर तुम्हें पूरा इसका परिक्रमा का फल मिलेगा। अभी भी ये वृंदावन में है। श्री चैतन्य महाप्रभु 536 साल पहले इस भारत भूमि में कलकत्ता के पास नवद्वीप मायापुर में आविर्भाव हुए थे। वो केवल जगत में 48 साल केवल थे। उन्हीं के प्रिय परिकर सनातन गोस्वामी उन्हीं के समय से ही जब वो अप्रकट हो गए, ब्रजवासी लोग देखे तो बड़े बाबा है, इसलिए मुंडन किया। जैसे पिता माता के चले जाने पर मुंडन करते हैं, मुंडन करके परिक्रमा किया गोवर्धन का, क्यों प्रतिदिन करते थे, उनके सम्मान के कारण किया और उनको जहाँ चक्रेश्वर महादेव के पास समाधि दिया। इसलिए उसी परंपरा में आज तो लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, तभी से संप्रदाय में चले आ रहे, प्रतिदिन परिक्रमा करते। इसलिए आज भी मुड़ियापुनो में लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। इसको मुड़ियापुनो गुरु पूजा या व्यास पूजा कहा जाता है। इसका प्रचलन कब से हुआ, दापर युग में। ये तो जो बोला पहले कलि युग का है। दापर युग में व्यासदेव एक थे जो भागवत प्रकाश किया, सब लोग जानते इसको। व्यासदेव जी का जन्म कृष्ण गंगा घाट पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम था पराशर। शाम के समय उस पर जाना चाहा, मल्ला थक चुके थे। उनकी बेटी का नाम था मत्स्यगंधा। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण उसमें शरीर में मछली जैसे बदबू होता है, इसलिए मत्स्यगंधा कहते थे। तो उनके पिता दासराज ने कहा, बेटी देख मेरा उम्र है, मैं थक चुका हूँ, जब बाबा को पार कर देगा। हाँ पिताजी क्यों नहीं, नाव चलाना जानती थी। तो क्या किया, नाव चला रही थी जब बीच में एक टापू मिला, उधर देखे, बोली क्या होगा, मैं जैसे गर्भवती समझ रही हूँ। केवल उन्होंने देखा, फिर से बच्चा पैदा हुआ। कैसे 16 साल का बच्चा, माँ के गर्भ से कभी 16 साल का बच्चा पैदा होता है, पूरा केस सब ये कुछ जटाजुट। तब पराशर ने बताया, देखो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये भगवत इच्छा से ही हुआ, तुम्हारा कुमारीपन नष्ट नहीं होगा। आज से तुम्हारे शरीर मछली का गंध नहीं रहेगा, कमल फूल का गंध रहेगा, खुशबू रहेगा। इसीलिए उसका नाम हो गया सत्यवती। और व्यासदेव माँ को प्रणाम किया, चार बार परिक्रमा की, मैया मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, जब तुम्हारा कोई जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं आऊँगा। वो जितने भी आज जितने भी आविष्कार देख रहे विज्ञान में, सब व्यासदेव के वेद में लिखा हुआ है। इसलिए एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने बताया, इंडिया गाइडेड बाय गॉड कैन लीड द वर्ल्ड बैक टू सैनिटी। भारत भगवान के द्वारा परिचालित होते हैं, भारत ही जगत को सुख एवं शांति के राह पर ले जा सकता है। उस व्यास के जो दिखाई हुए पथ है, व्यास मतलब विस्तार करना, भगवान के रूप गुण लीला को विस्तार करने वाले। आज भी जो व्यास गद्दी में बैठकर शुद्ध परंपरा में रहकर भगवान के रूप गुण लीला को प्रचार करते हैं पूरा विश्व में, उनके पूजा को भी व्यास पूजा या गुरु पूजा कहा जाता है। इसलिए हम सब संप्रदाय में ऐसे मनाते हैं। आज भी चल रहा है पूरा पृथ्वी में। कल ऐसे जो गुरु पूर्णिमा है, हम लोग कल ऐसे यही पर मनाएंगे। प्रति वर्ष हजारों लोग आते हैं, बिना देखे विश्वास नहीं करते। हम लोग इच्छा थी गोवर्धन में मनाएं, लेकिन इतने भीड़ है लोग जा नहीं सकते, इसलिए यहीं पर मनाएंगे।
1: गौड़िया मठ में इस पर्व को मनाने की अपनी क्या विशेष परंपरा है?
0: ये पर्वों को मनाने की विशेष परंपरा है, सबसे पहले सुबह हम लोग मुंडन कर लेंगे। मुंडन करने के बाद गुरु जी के अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत गुरु परंपरा की सब व्यासदेव तक पूजा, कृष्ण तक पूजा करेंगे। गुरु पूजा तो क्या है, मेरी गुरु पूजा, अर्थात मैं अपने हाथ से अपने गुरुवर्ग की पूजा करूंगा। ऐसे अभी उनके स्थान पर मैं हूं, इसलिए मैं अपने गुरु के परम गुरु परात्मा सबका पूजा करके सबको माला देंगे, चंदन आरती उतारेंगे, उतार करके हम बैठेंगे, सब लोग आएंगे जो पूजा करेंगे। पूजा का प्राप्त मेरा नहीं है, इसको लेके गुरु जी चरण अर्पण करेंगे। गुरुदेव अपने गुरु परम गुरु ऐसे करते करते नित्यानंद प्रभु महाप्रभु राधा कृष्ण चरण उनको समर्पण कर देंगे। यही गौड़ीय परंपरा की विशेषत्व है कि वो लोग अपने पूजा नहीं समझते, हमारे गुरु वर्ग की पूजा समझते हैं। और लोग तो अपने पूजा समझते हैं, क्योंकि हमारे गौड़ीय मठ में नहीं, मेरी गुरु की गुरु के गुरु उनके पूजा कृष्ण तक ऐसे पूजा होती है।
1: कहा जाता है कि सनातन धर्म के अंदर गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, तो इसके महत्व के बारे में और बताएं।
0: शास्त्र में कहा गया, महाजनो जिनो गतो सो पंथा। महाजन लोग जो बहुत अनुभवी लोग जिस रास्ते में गए हैं, उस रास्ते का हम फॉलो करेंगे। जैसे विज्ञान बता दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बता दिया, हो गया, फिर हमें वही मानते हैं। ऐसे हमारे गुरुवर्ग जो करके दिखाया, यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया, भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र

0: गुरु ऋषि को गुरु बनाया, संदीपन उनको स्कूल के टीचर थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को गुरु बनाया, ऐसे ये लोग भगवान होकर के भी गुरु बना के दिखाया। जब तक गुरु हम नहीं बनाए, हमारा हाथ का पानी भी शुद्ध नहीं होता है, दिया हुआ कुछ भी चीज शुद्ध नहीं होता है। जैसे बताया, किसी भी विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको गाइड चाहिए, इसको गाइड कहिए, इसको संस्कृत भाषा में गुरु या आचार्य कहते हैं। आप किसी भी से एक्सपर्ट होने जाइए, आपको कोई गाइड चाहिए, उसी गाइड का ही नाम है गुरु। इसलिए पारमार्थिक जीवन सक्सेसफुल करने के लिए हमें गुरु चाहिए। जब तक पारमार्थिक जीवन सक्सेस ना हो, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। खाओ पियो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं, तो पशु का है। तो हम पशु तुल्य रह जाए तो हमारा मनुष्य जीवन का फायदा क्या? इसलिए हमें जीवन भगवान ने दिया पेट भरने के लिए। कोई नौकरी करे, कोई बिजनेस करे, कोई फार्मिंग करे, करें, लेकिन ये जो हम करते शरीर के लिए, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा का खुराक है भगवान का भजन। इसलिए आप सभी लोग हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे से जप करेंगे, ये बल्कि वह कंठिल्ला गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं, कभी भी ये ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं।
1: आपने हमारे श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में और इसके महत्व के बारे में बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: आप लोगों को भी धन्यवाद है, जो श्रोता लोग सुनेंगे उनका उपकार हो इसलिए बताया। मैं भी श्रोताओं को सबका आभारी है, सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
2: श्रोताओं, मुख्य रूप से गोवर्धन में आयोजित राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आप हैं जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह।
3: सुप्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा का मेला ब्रज में और विशेष करके राज्य की तलहटी में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक मनाया जाएगा और इसमें गत वर्ष 1.5 करोड़ से अधिक लोग 4 दिनों में यहाँ आए थे और इस वर्ष हम लोग और अनुमान लगा रहे हैं कि 1.5 करोड़ से कहीं ज़्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ गिरिराजी की परिक्रमा करने, अपने आराध्य की पूजा करने, धान घाटी में, जतिपुरा मुखार बिंदु में, मानसी गंगा में, राधा कुंड में आएंगे। और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने बैठक की थी और विस्तृत बैठक मैंने और SSP साहब ने सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की है। पूरे मेले को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 30 से अधिक सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें सुपर जोन में अपर जिला अधिकारीगण और एडिशनल SPगण और जोन में SDM और CO की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा 60 से अधिक पार्किंग बनाई, 150 से अधिक बैरियर। पिछली बार भी हम लोगों ने पूरे गिरिराजी की परिक्रमा की जितने भी 30 किलोमीटर का एरिया है उसको साफ सफाई रंगाई पुताई खूब सजाया संवारा गया था। इस बार भी पहले से ही बीच में महामहिम राष्ट्रपति जी का जब दौरा हुआ था तब भी खूब सजाया संवारा गया है। तो उसी दृष्टि से पूरे सभी विभागों, चाहे PWD हो, चाहे MBDA हो, चाहे परिस्थिति विकास परिषद हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर पंचायतें हो, जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, बिजली विभाग है, विद्युत सुरक्षा विभाग है, अग्निशमन विभाग है, सबके साथ समन्वय करके इस बार जो बाहर से पूरे देश से लोग आते हैं, बस भी 1100 से अधिक रोडवेज की बसें एक्स्ट्रा लगाई गई थी, 30 से अधिक स्पेशल ट्रेन चली थी, इस बार भी उससे बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाए और जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वो हमारे अतिथि हैं, हमारे परिवारीजन हैं, तो उनके लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही हम लोगों को निर्देश दिया हुआ है कि छोटी सी छोटी तैयारी की जाए, ताकि चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, चाहे टॉयलेट की हो, या उनके पूरा परिक्रमा के दौरान और भी व्यवस्थाएं हो, परिक्रमा मार्ग को व्यवस्थित किया जाए, तो वो सारी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है टीम जिस तरीके से लगी हुई है, इस बार का भी मुड़िया पूर्णिमा मेला जो राजकीय मेला है भव्य और दिव्य तरीके से सम्पन्न होगा।
2: श्रोताओं, मुड़िया पूर्णिमा मेले के अंतर्गत श्रद्धालुओं की आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए काफी संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आप हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा से क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल।
4: सबसे पहले गिरिराज महाराज की जय। ये मुड़िया मेला जो दिनांक 23 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक रहेगा, जिसका के गुरु पूर्णिमा पर्व 29 जुलाई को है, इसके लिए करोड़ों यात्री यहाँ पे परिक्रमा देने गोवर्धन में आते हैं। परिवहन निगम के लिए एक जिम्मेदारी होती है कि उनको सकुशल मथुरा से गोवर्धन पहुँचाना और गोवर्धन से मथुरा या जहाँ गंतव्य है उन स्थानों पर पहुँचाना, जिसके लिए परिवहन निगम उनको सुरक्षित यात्रा कराने के लिए कटिबद्ध है। इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर मुड़िया मेला में

0: आगरा क्षेत्र रोडवेज ने 1000 बसें आवंटित की हैं। 100 बसें इसके अलावा रिजर्व भी की हैं। इस प्रकार 1100 बसें आवंटित रहेंगी, जो दिनांक 23 से शुरुआत हो जाएगी। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी बसों की संख्या बढ़ती जाएगी। बसें जो होंगी वो नीट एंड क्लीन सुरक्षित होंगी, नई बसें होंगी। हमारे मेले को परिवहन निगम ने 7 सेक्टर में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर पर 2 अधिकारी तैनात किए गए हैं। जाम की व्यवस्था को मुक्त करने के लिए QRT टीम लगाई गई है, जो कि इंटरसेप्टर से उपलब्ध रहेंगी, और 6 पॉइंट पर हमारी इंटरसेप्टर उपलब्ध रहेंगी। जो यहाँ की व्यवस्था के तहत जो धौली प्याऊ का रेलवे ग्राउंड है उसको पार्किंग स्थल रखा गया है। रेलवे के गेट नंबर 2 से बसों की शुरुआत होगी और गोवर्धन वाया अडिंग जाएंगी। लौटने का रास्ता वाया सोंक होकर होगा। आने जाने का किराया ₹50 रखा गया है। जाने का रास्ता वाया अडिंग होके है और आने का रास्ता वाया सोंक होकर है। इस प्रकार परिवहन निगम ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यदि कोई बस किसी प्रकार की कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है या कोई खराब हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाती है तो उसको तत्काल अटेंड कराने के लिए हमारी QRT टीम और जो हमारे क्रेन्स अवेलेबल रहेंगी, किसी को कोई कठिनाई नहीं होने देंगे और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए सभी श्रद्धालुओं को हम कटिबद्ध हैं। हम पूरी तरीके से निष्ठा के साथ उनको सुरक्षित यात्रा करवाएं।
1: मुड़िया पूर्णिमा मेले के इस भव्य और व्यापक आयोजन में स्वास्थ्य विभाग मथुरा की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इस बारे में जानकारी देते हुए आप हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा श्री राधा वल्लभ।
2: मेले में इस बार भीड़ बहुत आने की उम्मीद है, गोवर्धन में। खास करके गोवर्धन में हम लोगों ने करीब करीब अपने इस बार 22 बूथ लगाए हैं। इन बूथों पे चिकित्सा के स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, PHO और अन्य स्टाफ हमारा रहेगा। इसमें की दवाई पट्टी का काम और भी कोई काम है वो वहाँ रहेगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी, सबसे बेड भी उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा बेस हॉस्पिटल है CHC पर है, गोवर्धन CHC पे है, वहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात रहेंगे, जिसमें बेहोशी का डॉक्टर, एक हड्डी का डॉक्टर, एक जच्चा बच्चा रोग विशेषज्ञ का डॉक्टर, इतने हमारे डॉक्टर रहेंगे। इसके अलावा हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स भी तैनात रहेंगे। मेले के इर्द गिर्द जो हमारी और सब CHC पड़ती हैं, उस पार है, छाका है, कोसी है, परसाना है, कोसी खुर्द है और जितने भी अन्य हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सबसे हम लोगों ने चिकित्सकों की व्यवस्था कर ली। इस बार मेले में करीब करीब हमारी 25-108 एम्बुलेंस रहेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास 5 ALS एम्बुलेंस विशेष तौर पे रहेंगी। कोई भी ऐसा रोगग्रस्त व्यक्ति आता है या भीड़ भाड़ में दब जाता है या और उसे कोई चोट वोट लग जाती है, तो ऐसे स्थिति में हम उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमने अपने गोवर्धन के इर्द गिर्द 9 कंटीजेंसी हॉस्पिटल रखे हैं, मेडिकल कॉलेज उसमें 2 हैं, टिम्स हैं उसमें, और भी कई अन्य हॉस्पिटल हैं जिनको हम लोगों ने एम्पैनल कर रखा है। मेले में ये भी दिक्कत आती है कि कई बार लंबा क्षेत्र होता है, सांप काटने के लिए हमारे पास PHV की दवाई रहेगी, वैक्सीन रहेगी, वो भी हमारी CHC पे और 2-3 जगह और उपलब्ध रहेगी। डॉग बाइट के इंजेक्शन, कुत्ता काटे के इंजेक्शन भी हमारे यहाँ पूरे उपलब्ध रहेंगे। और इस बार भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि कभी कभी हमारे 4-पहिया वाहन अंदर तक नहीं जा पाते हैं, तो हमने बाइक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है और इस बार 7 बाइक एम्बुलेंस रहेंगी, जिससे कि हम लोग शीघ्र अति शीघ्र भीड़ के अंदर पहुंच जाएं और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसे हम लोग दूर कर सकें।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमने मेले में आए कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की।
3: मेरा नाम अभिलाष है जी, मैं पंजाब से आया हूँ और मैं गोवर्धन परिक्रमा लगाने आया हूँ। पंजाब से आया हूँ, जिला मेरा आगरा है, पंजाब में रहता हूँ। बहुत अच्छा मेला लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत अच्छा है।
4: तो आवागमन को लेकर व्यवस्थाओं के बारे में क्या करेंगे?
3: बिल्कुल अच्छा है
4: यहाँ, बस वगैरह पर्याप्त संख्या में है?
3: हाँ बिल्कुल ओके चल रही है, बस पल पल पर बस मिल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी सेवा हो रही है सबकी।
4: और यहाँ के कुछ ब्रजवासियों ने भंडारा वगैरह भी लगाया,
3: वहाँ सारी तरफ चल रहा है भंडारा, जो मर्जी का होगा।
5: दिल्ली से, बढ़िया व्यवस्था है, योगी जी के राज में अच्छी व्यवस्था चल रही है, काफी जरूरी गाड़ी रोक दी गई और यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड भी नहीं है और मैनेजमेंट बहुत अच्छी है,
6: व्यवस्था बहुत अच्छी है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है।

और श्रोताओं, बस एक नज़र आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। और आज की खास खबरों में है कि राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय ITI के प्रधानाचार्य ने बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 तय की गई है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में शामिल करने और विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जारी कर दी गई है। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त से 25 अगस्त तक भरे जाएंगे। और इसी के साथ एक और खबर है। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 7 व 8 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित होने वाली 21वीं राज्य यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जनपद के खिलाड़ियों के चयन हेतु ट्रायल 30 जुलाई को स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। और साथियों, इसी के साथ आपसे एक और अपील करना चाहेंगे कि हमेशा यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से होती हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि वाहन को तेज गति से नहीं चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करें, और हेलमेट का इस्तेमाल करें, और जो चार पहिया वाहन चालक हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। हमेशा ध्यान रखिए कि सड़क पर सुरक्षित चलना और लोगों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में यानी कितनी जिंदगियां मौत के गर्त में चली जाती हैं, जिससे कि उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप सड़क पर वाहन चला रहे हों तो कभी भी एयरफोन या मोबाइल फोन का बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि

अक्सर जब हम मोबाइल फोन पर बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान मोबाइल पर लगा रहता है और अचानक कोई भी व्यक्ति या वाहन हमारे सामने आ जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह से हमेशा तेज गति से जब वाहन हम चलाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कुछ लोगों में तेज गति से चलाने की आदत होती है या जो युवा होते हैं वो अक्सर अपनी शान दिखाने के लिए या स्टंट दिखाने के लिए भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है वहाँ भी तेज गति से वाहन चलाते हैं, क्योंकि ये नियम विरुद्ध भी है। इसलिए हमको तेज गति से वाहन नहीं चलाना है और हर स्थान पर अपनी एक गति सीमा निर्धारित रहती है तो उस गति सीमा के अंदर ही हमको वाहन को चलाना है, क्योंकि कभी कभी गति रोमांच तो देती है लेकिन जिंदगी भी छीन लेती है। तो बस इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है और आप जाएं तो अपने गंतव्य पर सुरक्षित जाएं, सुगम तरीके से जाएं और हमेशा खुश रहें। इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का खास प्रोग्राम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे जितेंद्र सिंह, संयोजन ओपी सिंह का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए राजेश कुमार शर्मा का लिखा रूपक गुरु चरणन त्रिलोक हैं गुरु अमृत की खान। वाचन संजय सारस्वत और दुर्गेश भास्कर का, प्रस्तुति डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की।
1: निखिल विश्व की आत्मा श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं। वे समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी हैं। वे ही सर्वव्यापक और अंतर्यामी हैं।
2: सच्चिदानंद श्री कृष्ण का निज धाम, उनकी बाल लीलाओं का साक्षी और उनकी आद्या शक्ति श्री राधा रानी का हृदय है ब्रजधाम।

0: समस्त ब्रजमंडल को रसिक संत जनों ने बैकुंठ से भी सर्वोपरि माना है। नारायण ब्रजभूमि को न नवावे माथो, जहां आप गोपी भई श्री गोपेश्वर नाथ।
1: इसी कारण ब्रजधाम सदैव से ही रसिक जन, संत जन और गुरु जनों की प्रबोधिका भूमि रही है। सदैव से इन्हीं तपस्वी जनों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आत्मबोधक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं अपने अनुकरणकर्ताओं को दी हैं।
0: और इस प्रकार मनीषियों ने जनमानस में धर्म, निष्ठा, आचार व्यवहार, पर्यावरण चेतना, जीव सम्मान और सामाजिक समभाव के भाव को पुष्ट किया। इतना ही नहीं, उनकी शिक्षाओं में साहित्य, कला, विज्ञान और प्रकृति संरक्षण का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है।

0: उन्नति का अवलोकन करते हैं तथा आध्यात्मिकता के शिखर पर शीघ्रता से आरूढ़ होने के लिए पुनः दृढ़ संकल्पित होते हैं।
1: इस प्रकार शिष्य गुरु से नया मार्गदर्शन, नया उत्साह और संकल्प लेकर अपने लक्ष्य के प्रति गतिमान होकर गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

आध्यात्मिकता के पथिकों के लिए नव वर्ष है आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा। इस पर्व पर साधक अपनी उन्नति

0: आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु शिष्य संबंध को समर्पित की जाती है। परंपरागत रूप से पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान और दान इत्यादि करते हुए पितरों को जल और तर्पण का विधान भी किया जाता है।
1: गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु पूजन का विधान है, क्योंकि मानव देह चेतना की ऊंचाइयों को छूने हेतु प्राप्त हुई है और ये चेतना बिना गुरु के संभव नहीं है।
0: गुरु महिमा में वर्णन आता है, गुरुर देवो गुरु धर्मो गुरौ निष्ठा परंतपः गुरौः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामिते। अर्थात गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म हैं, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है।
1: हमें गुरु कृपा क्यों चाहिए, गुरु का महत्व क्या है, अपने विचारों के साथ हैं गोविंद कृष्ण दास।
2: अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, मुझे गुरु की क्या जरूरत है, व्हाई डू वी नीड अ गुरु। हर चीज को जानने के लिए हमें गुरु तो चाहिए चाहिए, ऑफ कोर्स वी नीड अ गुरु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तो कह रहे हैं, इस मन को तो ही वश में लाना है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरेवा सुदुष्करम्। तो मन की बातों को सुनना और उसके हिसाब से काम करना, तो ये मन छलिया है। मन के लिए ही गुरु चाहिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार मन को इंगेज करना है, वी डू नीड अ गुरु। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपानी मुनि, भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण जी के गुरु हैं। श्री राम जी विश्वामित्र उनके गुरु जी हैं, वशिष्ठ जी भी दो दो गुरु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु दो गुरु, ईश्वरापुरी केशव भारती महाराज। तो गुरु आपके जीवन में, आपकी जो अध्यात्म, जो आपकी जो ये जर्नी है, दैट स्पिरिचुअल जर्नी, द ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर विल मेक दैट जर्नी वेरी ईजी फॉर यू।
0: गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और कृतज्ञता का दिवस है। इसी दिवस को भगवान शिव ने दक्षिणा मूर्ति स्वरूप में ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था।
1: आज ही के दिवस कृष्ण द्वैपायन गुरु संत वेद व्यास जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है। क्या है व्यास पूर्णिमा नाम की सार्थकता, बताते हैं चक्रवर्ती दास।
3: व्यास देव का जन्म बड़ा अद्भुत, भगवान के साहित्यिक अवतार व्यास देव जी, व्यास देव का और एक नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो क्यों कहते हैं इनको कृष्ण, लेकिन इनका रंग जो है वो सांवला है, तो इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। द्वैपायन क्यों, क्योंकि ये एक द्वीप पे जन्म हुआ इनका, जो नदी के बीच। वेद व्यास क्यों कहते हैं, पहले भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को वेद सुनाए, तब वेद एक ही था, और वो ज्ञान ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को दिया। तो वेद व्यास ने सोचा एक वेद को चार खंड में किया जाए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेदांत सूत्र लिखा, महाभारत लिखा, श्रीमद् भागवतम उनका सबसे भक्ति से परिपूर्ण। श्रीमद् भागवतम ऐसा प्रेम का रस है कि कोई अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेगा तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो ये वेद व्यास का बहुत बड़ा योगदान है हम सबके लिए, ये उनकी कृपा उनकी करुणा है। क्यों मनाते हैं हम ये व्यास पूर्णिमा उनके आविर्भाव जन्म की तिथि, क्योंकि वो आदि गुरु हैं।

0: गुरु पूर्णिमा एक ऐसा ज्ञान पर्व है जिसमें व्यास परंपरा की जीवंतता है। ये ज्ञान आराधना का पर्व है।
1: हमारे जीवन में प्रज्ञा और श्रद्धा की दो धाराएं अनवरत एक साथ चलती हैं। प्रज्ञावान सम्मान के अधिकारी हैं और श्रद्धावान हमारी धरोहर हैं।
0: गुरु पूर्णिमा प्रज्ञावान और श्रद्धावान के संबंधों का पुनर्जागरण दिवस है। प्रज्ञावान गुरुजन वे महामानव हैं जिनकी कृपा से जीवन संपूर्णता प्राप्त करता है, आत्मिक प्रखरता और पवित्रता प्राप्त करता है।

0: दास जी ने उल्लेख किया है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, ज्यों बिरंच संकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों ना हो।
1: अर्थात गुरु सभी के लिए अनिवार्य हैं। वे सत असत ज्ञान अज्ञान में विभेद कर सच्चे मार्गदर्शक का कार्य करते हैं।
0: कहा जाता है कि गुरु स्वयं परमात्मा भी हो सकता है। खालसा पंथ ने इस बात को स्पष्ट किया है, सतगुरु स्वयं परमात्मा है। गुरु गुण व्यापक भी हो सकता है।

0: अत्रेय ने तो पेड़ पौधे, वायु आकाश और समस्त चर अचर को गुरु की संज्ञा देकर ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु तत्व परम तत्व से एकाकार कैसे होता है तथा गुरु की विभिन्न श्रेणियां कौन सी हैं? बता रहे हैं स्वामी रामा देवानंद जी।
1: वैदिक और आगम दोनों में गुरुपद का विशेष महत्व है। जब हम किसी गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, तो एक संप्रदाय मुझे प्राप्त होती है। वो संप्रदाय हमको सीधे परमात्मा से जोड़ती है, परमात्मा तक पहुंचाती है। गुरु, परम गुरु, परमेश गुरु, परात्पर गुरु, जितना हम बढ़ते चले जाएंगे तो प्रत्येक संप्रदाय का उद्गम परमात्मा से हुआ करता है। तो पीछे हम बैक करते करते परमात्मा अर्थात नारायण तक की प्राप्ति करा लेते हैं। इसी प्रकार हम गुरुओं का जब स्मरण करते हैं तो उससे हमारी साधना में एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जो हमारे उन गुरुओं की शक्ति जिसमें सन्निहित होती है, उससे हमारा जीवन कृतार्थ होता है। तदुपरांत हम लोग जीवात्मा परमात्मा दोनों का ऐक्य प्राप्त करते हैं। जो हमारा ध्येय है, जो हमारा भटकाव है, हम परमात्मा से कैसे अलग हुए, कैसे हम लोग जीव हुए, कैसे हम अंश बने, परमात्मा ईश्वर और जीव की कब पृथकता हुई, इन सब भ्रांतियों की ग्रंथि का छेदन हो जाता है।
2: आषाढ़ पूर्णिमा की इस पावन तिथि को ही सिद्धार्थ गौतम का माता महामाया की कोख में आगमन हुआ था। इसी पावन दिवस पर तथागत बुद्ध ने सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 तपस्वी शिष्यों को इसी दिवस पर उपदेश दिया था। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान बोध के पश्चात संसार को अपना प्रथम उपदेश भी इसी दिवस को दिया था।

0: जैन समाज में आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास में विशेष आराधना की जाती है। आषाढ़ की अष्टमी से पूर्णिमा तक आयोजित होने वाला अश्यानिका पर्व भी गुरु पूर्णिमा को संपन्न होता है।
1: इस दौरान जैन मंदिरों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान नंदीश

पर द्वीप पूजन तथा अन्य विधान संपन्न किए जाते हैं, जिनमें जैन मुनियों गुरुओं का अभिषेक, शांति धारा, पाठ, श्रवण आदि किया जाता है तथा गुरुजनों को श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किए जाते हैं।

0: गुरु अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण करते हैं, इसलिए गुरु नाम की सार्थकता है, बताते हुए डॉक्टर राम कुमार।
1: शास्त्र में लिखा है कि अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर निमीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द का अर्थ यह है, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर करे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, उसे ही गुरु कहते हैं। शास्त्रों में भगवान वेद व्यास ऋषि जी, जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, 108 स्मृति लिखी है, उनकी स्मृति में ये दिन जो है मनाया जाता है, तभी से ये परंपरा प्रारंभ हुई है।
2: ब्रज में आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और मुड़िया पूनो के रूप में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। मुड़िया पूनो के नाम प्रचलन का आधार सनातन गोस्वामी की राजस से अध्यात्म तक की एक यात्रा है।
0: मान्यता के अनुसार पश्चिम बंगाल जिला मालदा के रामकेली ग्राम निवासी सनातन गोस्वामी राजा हुसैन शाह के मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
2: श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर वे उनसे मिलने बनारस आए। उन्हीं की प्रेरणा और निर्देश पर उन्होंने ब्रजवास किया।

0: कहा जाता है कि आधुनिक वृंदावन का नामांकन उन्होंने यमुना तट पर चिंतन मुद्रा में वृंदा यानी तुलसी वन को देखकर किया था।
1: सनातन गोस्वामी की श्री गिरिराज में अटूट आस्था थी। ब्रजवास के काल में उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। इतना ही नहीं, ब्रज के गुप्त और अज्ञात स्थलों की खोज व प्रतिष्ठा में उनका अपूर्व योगदान था। सनातन गोस्वामी के संबंध में विचारों के साथ हैं रामेश्वर गोस्वामी।
2: सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से जब असक्त शरीर हो गया तो वो चकलेश्वर के समीप आकर के और श्री मानसी गंगा के समीप आकर के कुटिया बना करके रहने लगे। यहाँ नित्य प्रति वो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे, तो आपके शिष्यगण और अनुयायी भी आपके साथ में परिक्रमा किया करते थे। जब और भी शरीर असक्त हो गया तो आपने मानसी परिक्रमा करने के लिए एक छोटा सा गिरिराज जी का स्वरूप वहां पधराया और वहीं उसकी परिक्रमा देते हुए आप मन से सात को उसकी परिक्रमा का भाव रखते थे और वहीं की वहीं परिक्रमा करके अपने गिरिराज जी की उस नियम को पूरे करते रहे। सन 1556 में आज के ही दिन जब आप श्री ने अपना शरीर त्यागा और आप निकुंज धाम को पधारे तो आपके शिष्यगणों ने और कुछ ब्रजवासियों ने आपके उस दिन को महोत्सव के रूप में मनाया और उसी परंपरा को आगे ले जाने के लिए ब्रजवासी और उनके अनुयायी गौड़ीय संप्रदाय के जो श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य हैं उन्होंने अपने अपने मुंडन कराए, भद्र कराया और भद्र करा करके आपके शरीर को लेकर के समस्त सात को उसकी परिक्रमा कराई। इसीलिए आपकी उस आस्था को एक महोत्सव के रूप में बदला कि वो आज तक परंपरा में बनता चला आ रहा है और यह व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा ही मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाने

0: बड़ी धूमधाम से ब्रजमंडल में मनाया जाता है। ये उत्सव पंचदिवसीय उत्सव है जिसमें श्री गिरिराज परिक्रमा हेतु लाखों श्रद्धालु अनवरत गिरिराज परिक्रमा करते हैं।
1: संत समागम, भजन कीर्तन, सत्संग और भंडारों का आयोजन ब्रजांचल में भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जाता है। इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज भी इस परंपरागत महापर्व की यात्रा जारी है, बताते हुए मुड़िया संत श्री राम कृष्ण दास।
2: मुड़िया मेला जो है लगभग 500 वर्ष पूर्व चालू हुआ। श्री सनातन गोस्वामी पाद की याद करते हुए इस मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू हुआ। उनको स्वर्गवास होने का उपरांत उनको आनन्य भक्त लोग, शिष्य लोग एवं ब्रजवासी सब मिलकर के सिर मुड़ा करके उनको श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए डोली में बैठा कर मुड़िया पूर्णिमा मतलब उसी दिन से चालू हुआ था। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से मानसी गंगा परिक्रमा किए थे, जो परंपरा आज भी श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर से हम निभाते आ रहे हैं। क्योंकि मुड़िया मेला यहाँ से चालू हुआ था, सनातन गोस्वामी पाद यहाँ ही अप्रकट हुए थे। श्री श्यामानंद प्रभु के नेतृत्व में ये परंपरा चले आ रही। करोड़ों से ऊपर संख्या में लोग आते हैं। प्रशासन के द्वारा इसको व्यवस्था किया जाता है, क्योंकि इतना संख्या में भीड़ हो जाते हैं, जिसके लिए प्रशासन पूरा दायित्व से अपना कार्य करते हैं और जनता को पूरा सुविधा दिया जाता है। इतना बड़ा मेला है, ये अगर मैं कहूँगा तो ये मिनी कुंभ है।
0: इस महापर्व पर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान, भक्ति, त्याग और समर्पण के प्रति निष्ठा अनिवार्य है। वस्तुतः क्या है ये शिष्य परंपरा, बता रहे हैं अपने आशीर्वचन में कार्ष्णी गुरु शरणानंद जी महाराज।
3: मूलम गुरु मूर्ति गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु पूर्णिमा वस्तुतः गुरु का पर्व नहीं है, शिष्य का पर्व है। शिष्य अपनी श्रद्धा प्रकट करवे के ताई आज के दिना श्री गुरु के चरण में उपस्थित हुए हैं। ये आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मानवे को इतिहास बड़ो पुरानो है। भगवान बुद्ध और उनके पूर्व भी इसे वर्षावास या चतुर्मास इत्यादि नामों से अभिहित किए जाते। ये संप्रदान को मास है। प्राय करके संत एक स्थल पर रह करके अनुष्ठान भी संपादित करते थे, और एक स्थान पर रहने के कारण गुरु और शिष्य का परस्पर अध्ययन और अध्यापन का भी मार्ग सुकर हो जाता था। इसलिए चातुर्मास में कोई न कोई एक ग्रंथ का आश्रय करके गुरु और शिष्य परस्पर संप्रदान और आदान किया करते थे। आज भी परंपरा है, कई संत चतुर्मास करने के लिए जाते हैं तो वहाँ तात्पर्य होता कि यहाँ इतने दिन रह के कोई शास्त्र पढ़ाएंगे और कुछ प्रवचन इत्यादि। तो चातुर्मास में एक स्थल पर संत रहता है, वो अपनी अनुभूति, वो अपना ज्ञान आए हुए शिष्य को प्रदान करता है।

0: गुरु कोई एक शरीर नहीं, एक तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध शरीर से परे आत्मिक होता है।
1: गुरु पूर्णिमा गुरु से दीक्षा लेने, साधना को सफल बनाने और गुरु को स्मरण करने का दिवस है। जीवन यात्रा हेतु एक नई ऊर्जा और नई चेतना का दिवस है। यही है मुक्ति।

0: से।
1: अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार शर्मा का लिखा रूपक गुरु चरणन त्रिलोक हैं गुरु अमृत की खान। वाचन संजय सारस्वत और दुर्गेश भास्कर का था। प्रस्तुति डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

दिन में 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत बात और SMS करेंगे व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 94-122-25-575। दिन में 12:30 पर श्रोता साथी सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार होंगे संपत लाल जोशी, आप सुनेंगे इनसे लावनी। समय दिन में 12:30।

दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसमें आज चर्चा रहेगी गुरु का जीवन में महत्व और साथ ही चर्चा बच्चों के स्क्रीन टाइम और डिजिटल आदतों में अभिभावकों की भूमिका। इस विषय पर ये बात साथ ही मीरा शास्त्री से सुनेंगे आप वार्ता गुरु पर्व और उसका महत्व।

0: कार्यक्रम का ये नगमा फिल्म रेशमा और शेरा से, आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत जयदेव का।
1: एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन,

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म रेशमा और शेरा में, और अभी सुने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये गीत। आवाज इस गीत में मुकेश की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म छिछोरे से, आवाज़ इस गीत में अरिजीत सिंह की।

अरिजीत सिंह को अभी आप सुन रहे थे फिल्म छिछोरे में। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म लुका छिपी से ये गीत। आवाज इस गीत में तुलसी कुमार की।

कुणाल वर्मा का गीत संगीत तनिष्क बागची का और आवाज तुलसी कुमार की फिल्म लुका छिपी से था ये गीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये वाला गीत जिसे लिया फिल्म फना से। आवाज इस गीत पे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, गीत प्रसून जोशी का, संगीत जतिन ललित का।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों को सुना आपने। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिया हमने फिल्म गजनी से, गीत प्रसून जोशी का, संगीत एआर रहमान का, आवाज़ इस गीत में श्रेया घोषाल और बेनी दयाल की।

अभी आप सुन रहे थे बेनी दयाल श्रेया घोषाल को फिल्म गजनी में। गीत प्रसून जोशी का था, संगीत एआर रहमान का। फिल्म गजनी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं आपके बीच संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: आवाज के जादूगर आदरणीय संजय सारसा साहब को सादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी, मैं आपका पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है प्रजापति जी आपका कार्यक्रम में।
1: जी, हृदय से धन्यवाद।
0: और सब सकुशल हैं सर?
1: सब बांके बिहारी कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ में है, घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं। आकाश

0: कारणों से हैं, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा स्वागत रहता है सर। और गुरु पूर्णिमा पर्व की आपको शुभकामनाएं बहुत सारी।
0: हृदय से धन्यवाद करते हुए आपको, आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
1: जी जी, आज क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में हमारे सर, बताइए।
0: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं।
1: जी,
0: इसका शीर्षक गीत है फूलों में खुशबू है दिल में तुम, ये प्यारा सा मधुर गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से प्रसारण हेतु।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
0: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: राधे जी।
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: मध्य जी बोल रहा हूँ बड़ाई से। हम तो
0: क्या करते हैं देवी सिंह जी आप?
1: दुकान करते हैं सर, पर्चने
0: अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी?
1: की दुकान है। हम तो
0: अच्छा, आप हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं?
1: वो काफी दिनों से सुन रहे हैं।
0: कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम आपको?
1: लगता है हमारे कुछ साथी हैं वो भी गाना सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा,
1: उनका नाम है अर्जुन सिंह, पप्पू सिंह, उनका नाम है दिल के राज, और गाना है सपनों में आऊंगा अपना मनाऊंगा तेरी कसम से मैं।
0: देवी सिंह जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: ठीक है मेरा बराबर।
0: राधे राधे।

0: हेलो
1: हेलो राधे राधे। मैं
0: राधे राधे,
1: नीरेश उपाध्याय बोल रहा हूँ सर, श्रीनगर से। जी
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: सर,
0: श्रीनगर कहाँ पड़ता है ये?
1: ये जिला फिरोजाबाद में हाट पशुपुरा, सुना होगा आपने, टूंगला के पास में।
0: अच्छा, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी सर,
0: और उपाध्याय
1: और
0: जी, कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं हमारा?
1: सर कार्यक्रम तो आपका तकरीबन 1 साल सी हो गई मेरे को, क्योंकि बीच में अभी रेडियो सेट मिल नहीं रहा था। अभी क्या ये मोबाइल जो है कीपैड वाले, इसी पे FM के साथ में आपका मतलब कनेक्ट करता है,
0: जी,
1: दोबारा से फिर सुनने लगे। यानी बीच में तो उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि दोबारा कभी आकाशवाणी में फोन कर पाएंगे, क्योंकि रेडियो सेट मिलता ही नहीं है।
0: अब तो मोबाइल पे आपको कीपैड वाले पे भी या एंड्रॉइड वाले पे सब पे सुनाई देगा। FM लगा लीजिए।
1: हाँ, कीपैड वाले पे ही सुनता हूँ सर मैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। क्या फरमाइश है आज कार्यक्रम में, बताइए।
1: सर फिल्म का नाम है निगाहें,
0: जी,
1: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत
1: जी
0: बहुत
1: सर,
0: धन्यवाद आपका।
1: ओके सर, राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: डी आर नारवानी हूँ, चकरभाड़ा कैंप से। जी
0: स्वागत है नारवानी जी कार्यक्रम में।
1: सर, बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पर।
0: अच्छा,
1: जी हाँ, 15-20 दिनों से पानी लगातार लगभग पड़ रहा है, गर्मी पूरी तरह से भाग गई है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मौसम
1: बिल्कुल
0: सुहावना
1: सर।
0: है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो थोड़ी बारिश एक दो दिन होने के बाद रुक गई, अब उमस हो रही है।
1: जी, मैं भी आया था सर, 17 जुलाई को मथुरा पहुंचा था।
0: जी
1: 18, 19, 20 रहा, 20 को वहाँ पर पानी पड़ा था।
0: हाँ,
1: 3 दिन तो इतनी गर्मी थी, हम तो परेशान हो गए थे वहाँ पर। जी
0: हाँ, उमस बहुत हो जाती है। लगातार पानी पड़े तब तो आराम रहता है।
1: हैं, जी हैं, बिल्कुल सही कहना है। यहाँ तो क्या है, नदी नाले से भर गए हैं, तालाब भी भर के फूट गए हैं। मतलब
0: जी
1: समय पानी
0: जी
1: बढ़िया है, किसान लोग अपनी धान उगान में लगे हुए हैं।
0: कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका?
1: बिलासपुर, बिलासपुर। जी
0: बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट।
1: जी
0: हाँ, आज क्या पसंद रहेगी नारवानी जी, बताइए।
1: गाना सुना के मुझे, बरसा मौसम है तो भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में,
0: ऐसा लगता है।
1: आकाशवाणी मथुरा के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशन पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूं सर जी।
0: आपका स्वागत है शाके साहब कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद। और कैसे हैं सर आप और आकाशवाणी परिवार में?
0: बहुत अच्छे हैं, दुआएं हैं हमारे श्रोताओं की। आज बताइए क्या फरमाइश रहने वाली है कार्यक्रम में?
1: फरमाइश तो रहेगी हीर रांझा तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, मोहम्मद रफी की आवाज।
0: आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रूप सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम पेश किया संजय सारस्वत ने।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, फिल्म का नाम है गैम्बलर। इस गीत को लिखा नीरज ने, संगीत दिया SD बर्मन ने।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज में। इस गीत को लिखा है सावन कुमार ने, धुन बनाई है उषा खन्ना ने और फिल्म का नाम है सबक।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। ये गीत है फिल्म घर का, आवाज है लता मंगेशकर की। गुलजार के लिखे गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई SD परमन ने, और फिल्म है तलाश।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जी हां श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज, और हमारे सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं आपके संदेशों का सिलसिला। ये हमारे जो श्रोता हैं वो काफी देर से प्रतीक्षा में हैं, काफी संदेश हमारे पास आ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं आपके संदेशों को पढ़ना। ये संदेश हमें मिला है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। अगला संदेश है कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन और इनके संगी साथियों का। ये श्रोता हमसे जुड़ गए हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नावकर, निर्मला, विशाल, सोपान ताइडे, नारायण इगले और आशीष मोहरकर। और ये श्रोता मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश लिखते हैं TD मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप और इनके सभी मित्रगण। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन।

और ये संदेश है संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक और जियाउल हक का। और ये श्रोता कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। अगला संदेश जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव का संदेश है। और संबलपुर कांकेर से जुड़े हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। ये संदेश रिंगनी छत्तीसगढ़ से मिला है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद। और अगले फरमाइश करता हैं हमीरपुर से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी। और ये संदेश भेज रहे हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। जैन मंदिर वाली गली कोरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनके मित्र। और हमें संदेश लिखा है नाहर मंटोला मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली ने। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक भी जुड़े हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव। और ये संदेश है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। और हमारे ये श्रोता हमें संदेश लिखते हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता, केशुरिधान खुराना और इनके सभी परिवारीजन। श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, आपने सुना चुपके चुपके फिल्म से ये गीत, स्वर लता मंगेशकर का था। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। हमारे ये श्रोता हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश और बबलू निषाद, साथ में हैं तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। और हमसे जुड़े हैं ये श्रोता सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। महसौल सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। और ये श्रोता हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। ये संदेश भेजा है वरवट वकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे ने। और ये श्रोता हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजियाना से साजिद और शाहिद। और ये श्रोता हैं तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानुराज और अमित खन्ना। और ये श्रोता तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक, नीनाजी और स्वप्निल। अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, चीनू, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। और अगला संदेश हमें मिला है ब्रज रेडियो श्रोता मित्रों का, चौधरी महेंद्र सिंह, शारदा प्रसाद प्रजापति, राजू लावानिया, भजनलाल, यादराम और वीरेंद्र कुमार का। रहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हैं रुचिका रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, हर्षा और पूरा रामेकर परिवार। और हमसे जुड़े ये श्रोता नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव और इनके संगी साथी। नेपानगर एमपी से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। अगला संदेश लिखा है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नदीप, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम ने। बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। अगला संदेश रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और

डीकेश साहू का मिला। और ये श्रोता जुड़े हैं राजनगर बिहार से, नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, गोदावरी, प्रदीप कुमार, राज बहादुर और इनके संगी साथी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा और इनके सभी मित्र, फटानी चौक नरहन स्टेट से हैं लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से जुड़े हैं मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा, हसन, बाबू अहद, मिफानाज और बेबी चाहत, साथ में सादिया। और ये संदेश कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने लिखा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा, रामटेके और श्रव्या। कड़ताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से हैं कानगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विग्नेश और इनके साथी। राजनगर कांति निकेतन से रुद्रा भाई, रुद्राजी, कुशेश्वर, कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, शारदा रानी, मुकेश, रश्मि, नीलम और रूपा इलाहाबादी। ये संदेश लिखा है रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर ये सुनवा रहे हैं आपको गीत। इस गीत को स्वर दिए हैं जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों ने। फिल्म आया सावन को आने दो।

जी हाँ श्रोताओं, आपने सुना जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों को। फिल्म थी सावन को आने दो। और अब कार्यक्रम का ये गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। ये श्रोता हैं नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और ये संदेश लिख रहे हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे, लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय और साई किरण। तेलंगाना करीम नगर से संदेश लिखा है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कालपी वाले, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव, साइना शर्मा और निवान शर्मा, नलगोंडा तेलंगाना से हैं मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनी रूनिसा। और ये संदेश लिख रहे हैं तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी। और ये संदेश हमें भेजा जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े ने। और हमसे जुड़े हैं ये श्रोता राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शिंदे, प्रणय और प्रतिभा गोंडा ने। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से हमारे श्रोता कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री, कोमल सेन, तोषण, विनायक सेन हमारे श्रोता सौंगा जिला धमतरी से। और ये श्रोता हैं काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से, प्रकाश रंबाड़े, भारती, जानवी वैष्णवी और हर्षल रंबाड़े, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से लिखा है संदेश रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष ने। कोटवा नारायणपुर से बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय। और ये संदेश मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का। गाडगे नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रेयांश और पूरा लोखंडे परिवार। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल, संजीव बंटी और इनका पूरा खुशदिल परिवार। और ये हमारे श्रोता हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। आलोट जिला रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी। ये संदेश वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा का। बेरडी एमपी से हैं हुकुम करमकर और सुनीता, हार्तिक, प्राची और तनया करमकर का संदेश मिल रहा है। और ये श्रोता गणेशपुर गंज ढुंडवारा से हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। और ये श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा।

कॉलोनी रोहतक हरियाणा से हमारे श्रोता कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, क्रांति गामबाली, रानी संगीता मुखिया, भुलिया देवी गुप्ता, तरसराय दरभंगा से, और ये संदेश ललितपुर यूपी से मिला है। संतोष, नामदेव, अभय, अनिल, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, अनु, अनन्या और पूरा नामदेव परिवार। श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं ये गीत। फिल्म है मंजिल, स्वर किशोर कुमार का।

और अब कार्यक्रम के आखिर में हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। ये श्रोता हैं बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ये संदेश खैल बाजार पानीपत से मिला नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल और नानक चंद मल्होत्रा का। दतरेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। ये श्रोता हैं तेलंगाना से चोटुप्पल, कस्तूरी रामुडू, वुमा देवी और पृथ्वी नारायणा। हमारे ये श्रोता हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन और इनके मित्रगण। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ये श्रोता हैं परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश।

प्रज्ञेश, प्रितेश और पूरा संघई परिवार हमसे जुड़े हैं ये श्रोता। तिरुपति से प्रकाश श्यामला और हमारे ये श्रोता हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और इनके संगी साथी। हीरा वाली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष, गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके परिवारीजन। नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय। और ये श्रोता हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी और इनके सभी मित्रगण। गमरिया जमशेदपुर से रोहन, आर्य, विजय, सरोज, मुराहू, देवंती, सुंदर और सुमन जायसवाल। और ये श्रोता हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, मनीष और डैनी पवार। श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म क्रिएचर से स्वर अरिजीत सिंह का है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस को यहीं विराम देते हैं। कल आपकी फरमाइशों के साथ और आपके संदेशों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: 2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: थोड़ी ही देर में हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोक गीत।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लावनी। लावनी गायक कलाकार हैं संपत लाल जोशी।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं संपतलाल जोशी के स्वर में लावनी। आइए सुनते हैं इनकी गाई ये लावनी।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: और आइए अब सुनते हैं संपत लाल जोशी के स्वर में ये लावनी।

अभी तक आप सुन रहे थे संपतलाल जोशी के स्वर में लावनी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीरवन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉ शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम।

अब से थोड़ी ही देर बाद 1:10 पर आप सुनेंगे देशगान, 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इस कार्यक्रम में गुरु का जीवन में महत्व, गुरु पूर्णिमा पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा चर्चा का विषय रहेगा बच्चों के स्क्रीन टाइम और डिजिटल आदतों में अभिभावकों की भूमिका। इसी कार्यक्रम में मीरा शास्त्री वार्ता प्रस्तुत करेंगी गुरु पर्व और उसका महत्व विषय पर। एक 1:45 पर श्रोता आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का।

2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। संध्या 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। आज की बात के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और गुड़ पूर्णिमा। इसी कार्यक्रम में गोपाल सक्सेना की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी गुरु दक्षिणा। संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में पशु पोषण में खनिज लवण और खेतों में जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक विषयों पर चर्चा होगी। डॉक्टर धनराज शर्मा जानकारी प्रस्तुत करेंगे बरसाती सब्जियों की खेती में समस्याएं और समाधान विषय पर। संध्या 6:45 पर श्रोता सुनेंगे संध्या वंदन कार्यक्रम। 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज वार्ता, ब्रज में गुरु पूर्णिमा को महत्व। ये वार्ता प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर नीता सिंह।

श्याम सुहानी। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम संध्या 7:31 से 8 बजे के मध्य हमारे श्रोता सुनेंगे। 8:15 पर कुछ देशगान और 8:30 का समय होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

0: संवेद स्वरों में अभी आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी ही देर में महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अब महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक।

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है, तभी तो कहा भी गया है, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। हमारे देश में गुरु और शिष्य का यह अटूट रिश्ता प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि स्वयं ईश्वर ने भी अपने गुरु की ही आराधना की थी। बहनों, जितने भी राजा महाराजा सभी ने अपने गुरु की आराधना करके ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की थी। गुरु शिष्य के इस अनोखे रिश्ते से यह तो साबित होता है कि कोई चाहे कितना भी

ज्ञानी हो, फिर भी उसे गुरु की आवश्यकता होती ही है। बहनों, गुरु के द्वारा ही हमारे जीवन में ज्ञान रूपी ज्योति चमकती है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। कहते ही हैं, हरि रूठे गुरु ठौर, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी कि भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण नहीं मिल पाती है। हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान रूपी आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहनों, गुरु की आराधना संपूर्ण जीवन ही की जाती है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन सभी भक्तगण अपने गुरु के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। आज के पवित्र दिन स्वयं भगवान नारायण के स्वरूप महर्षि वेद व्यास जी धरती पर अवतरित हुए थे। आज के दिन ही वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उप पुराणों और महाभारत की रचना भी आज के दिन ही पूर्ण हुई थी। इसीलिए आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहनों, गुरु आत्मज्ञानी, आत्मनियंत्रित, संयमी और अंतर्दृष्टि से युक्त होते हैं, जो अपने शिष्य की कमजोरी, ताकत, उसकी बुद्धि को भली भांति पहचान कर ही उसे शिक्षा प्रदान करते हैं और जीवन को ज्ञान रूपी ज्योति से चमकाते हैं। बहनों, आज के शुभ अवसर पर सुनवाते हैं आपको वार्ता गुरु पर्व और इसका महत्व। हमें जानकारी दे रही हैं मीना शास्त्री।

गुरु पूर्णिमा। गुरु कौन है और पूर्णिमा का क्या अर्थ है? गुरु शब्द को पूर्णिमा शब्द के साथ क्यों जोड़ा गया है? आज हम इसी पर चर्चा करते हैं जो हमारे वेद ग्रंथों में वर्णित है। गुरु वो है जो हमें भवसागर के अंधकार से मुक्त कर जीव को उस नित्य प्रकाश की ओर मोड़ता है, जिससे मनुष्य अपूर्ण जगत में रहते हुए पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब गुरु शब्द की बात आती है तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है, जिन्होंने गीता ज्ञान, विज्ञान इत्यादि इस धराधाम को प्रदान किए हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण जगत के गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाड़ूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया, उसके पीछे का क्या रहस्य है? तो रहस्य ये है कि मनुष्य का जो क्रियाकलाप है और मानव की मस्तिष्क की वायुवाहक नाड़ियां हैं एवं मानव की आड़त वेदना है, उसकी हृदय की जो पीड़ा है, ये सब द्विमंडलों में जाती है और इसीलिए ये द्विमंडलों से मानव का जो संबंध है ये बना रहता है। जब मनुष्य पृथ्वी पर कोई क्रिया करता है, वह कोई भी घटना उसके द्वारा घटित होती है या कोई भी चित्रण होते हैं, तो ये सब द्विमंडलों में एकत्रित रहते हैं। मनुष्य जितनी भी क्रियाकलाप करता है वो सब की सब इन्हीं द्विमंडलों में एकत्रित रहती है। जैसे आज हम मोबाइल चलाते हैं तो जो वार्ता संवाद करते हैं वह भी रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः सुना जा सकता है। परंतु प्रणालिका, वही प्रणालिका हमारे वेदों में भी थी, उसी का अध्ययन करते हुए आज इन यंत्रों को निर्मित किया गया है। परंतु ये निर्माण क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर रही हैं। इस प्रकार ये यंत्र उस काल में भी उपलब्ध थे और आज भी मौजूद हैं। तो पृथ्वी का सारा क्रियाकलाप है, ये सभी का सब द्विमंडलों में एकत्रित रहता है। और जब कोई आपसे पूछता है कि 20 वर्ष या 30 वर्ष पहले आप फला व्यक्ति से मिले थे, तो वहां उस समय आपने क्या क्या क्रियाकलाप किया था, तब वहां क्या क्या घटना घटित हुई थी, वो घटना 20, 25, 50 वर्ष

पुरानी भी होती है, तो जैसे ही प्रश्नात्मक शब्द आपके कानों में टकराता है, तभी मनुष्य के मस्तिष्क की वायुवाहक नाड़ियां द्वीपों से संपर्क कर लेती हैं। मानव के आंखों में उन घटनाओं का चक्र और मस्तिष्क में वह घूमने लगता है। वायुवाहक नाड़ियां इतने पुराने चित्रों को ग्रहण करके शब्द के साथ मुख से प्रसारण होने लगता है और वह घटनाओं के चित्र मस्तिष्क में आ जाते हैं। तो मानव का ये जो शरीर है, ये 72,72,10,202 नाड़ियों से निर्मित है। प्रत्येक नाड़ियों का संबंध द्विमंडलों से बना रहता है। तो मनुष्य का जो क्रियाकलाप है, पृथ्वी के ऊपर ये द्विमंडलों में रहता है, इसलिए द्विमंडलों में शांति बनी रहनी चाहिए। द्विमंडल सदा पवित्र बना रहना चाहिए। जब हमने पृथ्वी पर जो यज्ञ अनुष्ठान देवताओं की पूजा अर्चना की हुई होती है और उसके बाद जब हम विष्णवे स्वाहा बोलते हैं, तो वो आहुतियाँ अंतरिक्ष मंडलों में जाकर के वायुओं का शोधन करती हुई, उसकी अपवित्रता को नष्ट करती हुई द्विलोकों में गमन करती है। और द्विलोकों में जब वे पहुँचती है, तो द्विलोकों से जिस देवता की पूजा की गई होती है, उस देवता को वो द्रव्य प्राप्त हो जाता है और देवता देव कहलाते हैं, क्योंकि देव में देने की प्रवृत्ति होती है। तो जब वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसका ग्रहण नहीं करते और केवल स्वीकारते हैं, तो स्वीकारने मात्र से मनुष्य का जो संकल्प है, वो संकल्प जब देवताओं के द्वार पर जाता है, तो देवता जान जाते हैं कि पृथ्वी पर इस मानव ने कौन से संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारी पूजा की है। तो उसी प्रकार के जो संकल्प हैं, ये देवता अंतरिक्ष से गमन कराते हैं। वो अपने शरीर से परमाणु उत्पन्न करते हैं आशीर्वाद के रूप में, और वही परमाणु वायुमंडल में चले जाते हैं। वायुमंडल से गमन करते हुए वो परमाणु अंतरिक्ष में, और फिर अंतरिक्ष के परमाणु से मिलान करते हुए अग्नि में, अग्नि से मिलान करते हुए जल में, और जल से मिलान करते हुए उन परमाणुओं को लेकर पृथ्वी तत्व में मिलान करते हुए वायुमंडल बन करके परमाणु स्वरूप वो पुण्यात्मा के परमाणु, आशीर्वाद के परमाणु उस मनुष्य के निकट आ जाते हैं। और निकट आ जाने पर मनुष्य जब श्वास लेता है, तब श्वास लेने के साथ वो परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक भगवान शिव के सिवाय ऐसा नहीं हुआ है जो ये निर्णय करा सके कि मनुष्य एक श्वास में कितने परमाणु ग्रहण करता है। भगवान शिव ने परमाणुओं का वर्णन करते हुए कहा था कि मनुष्य जब श्वास लेता है, तो एक श्वास में 95,000,000,000 पृथ्वी के परमाणु, 95,000,000,000 जल के परमाणु, 2,52,29,49,252 परमाणु अंतरिक्ष के, इतने ही अग्नि के, इतने ही वायु के जब एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, तो श्वास ली जाती है और ये परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। और शरीर में प्रविष्ट होकर के हमारे पूरे शरीर में जाकर 72,72,10,202 नाड़ियों में भ्रमण करते हुए और कुछ ही समय में ये परमाणु बाहर चले जाते हैं। और जब ये बाहर गमन कर जाते हैं, तो यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी से उन वायु कला का परम विज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे कि जानते हैं कि श्री कृष्ण में 16 कलाएं थीं। उन 16 कलाओं में मस्तिष्क कला, घ्राण कला, वायु कला, सोम कला, पूर्वी कला, प्रतीची कला थी। तो उनको पूर्वी कला का जो ज्ञान था, उस पूर्वी कला में जितना भी संसार का प्रकाश है, जितना भी वेदों का ज्ञान है, वे उसके ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण वायु कला के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। मानव जब श्वास लेकर के जब बाहर छोड़ता है, तो वायु के जो 2,05,29,49,252 परमाणु होते हैं, उनमें से प्रत्येक एक एक परमाणु पर श्री कृष्ण का विशेष अनुसंधान बना रहता था। और जब कोई व्यक्ति उनकी सभा में विराजमान होता था, तो वहां सभा में कोई भी व्यक्ति

क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, परंतु बोलना नहीं चाहता, तो भगवान श्री कृष्ण उन परमाणुओं के द्वारा ये ज्ञात कर लेते थे कि सामने वाला व्यक्ति घातक है या सहायक है, उसकी किस प्रकार की विचारधारा है, ये वे जान लेते थे। और इन्हीं तत्वों से श्री कृष्ण ने पांडवों को बड़े बड़े संकटों से बचाने में सहायता की है। तो श्री कृष्ण इन परमाणुओं के परम ज्ञाता थे, वे वायु कला के ज्ञाता रहे और जगत को बताया कि जो परमाणु शरीर से निकलते हैं तो मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क से श्वास के द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र में चले जाते हैं और स्वाधिष्ठान चक्र से गमन करते हुए कंठ चक्र में, कंठ चक्र से गमन करते हुए घ्राण चक्र में और घ्राण चक्र से गमन करते हुए मस्तिष्क में आते हैं और मस्तिष्क में आते हैं तो 17 प्रकार के मनुष्य के मस्तिष्क होते हैं। तो जब मनुष्य इस संसार में क्रियाकलाप करता है तो 17 प्रकार के क्रियाकलाप में 9 प्रकार के कार्य एक साथ कर सकता है। मानस में चौपाई आती है,

अर्थात जब गोस्वामी बाबा तुलसी अपने गुरु की वंदना करने गए तब सोच में पड़ गए कि गुरु तत्व बहुत ऊंचा है जिसमें साक्षात परब्रह्म जगत नियंता जगताधार राम और कृष्ण का वास है। मैं इस मस्तक मुख नेत्र हस्त इत्यादि की वंदना करने में असमर्थ हूँ, इसलिए चरणों की भी नहीं अपितु चरण के अंगूठे की रज को प्रणाम किया। चरण रज की बड़ी अनोखी महिमा है। तभी तो हजारों वर्षों पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में लीलाएं की और उनके चरणों की रज यहाँ स्पर्श हुआ करती है। तभी उस रज को शिरोधार्य करने के लिए दूर दूर से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्तगण यहाँ पर आते हैं। कभी वृंदावन, कभी यमुना तट, कभी रमण रेती, तो कभी वृंदावन की परिक्रमा कर यहाँ की रज में लोट लगाते हैं और भक्ति भाव में ओतप्रोत हो जाते हैं। श्री गिरिराज जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है ये मानते हुए आषाढ़ माह की पूर्णिमा के समय श्री गोवर्धन की परिक्रमा, दर्शन, पूजन, वंदन कर जीवन की सफलता की कामना करते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन पूरी धराधाम को वेद, शास्त्र, उपनिषद ग्रंथ प्रदान करने वाले भगवान के 24 अवतारों में से एक श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए संसार में प्रत्येक गुरु शरीर में श्री व्यास जी व पर ब्रह्म गोविंद का तत्व मौजूद है, यही समझते हुए शिष्यगण अपने गुरु गोविंद की पूजा, अर्चना, वंदना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करते हैं, क्योंकि गुरु नित्य है, गुरु सत्य है, वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु परम सत्य है जो शरीर में रहते हुए भी शिष्य का कल्याण करता है। और जब शरीर छूट जाता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु शिष्य को ज्ञान की याचना के लिए कभी भटकने नहीं देता। फिर वो प्रकृति के रूप में परिवर्तित होकर के प्रत्येक अच्छी बुरी घटनाओं में भी शिष्य को ज्ञान का प्रकाश लुटाता रहता है। ऐसे गुरु के लिए शिष्य ने भगवान से भी कह दिया कि तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। शिष्य भगवान से कहता है कि आपसे भी अधिक संसार में प्रभु यदि कुछ है तो वो गुरु है। भगवान कहें वो कैसे, तो शिष्य कहता है कि आपकी कृपा से प्रभु जन्म मिलता है, परंतु गुरु कृपा से जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। गुरु की महिमा बहुत ऊंची है। यो गुरु सा शिवः प्रोक्तो या शिवः सा गुरु स्मृतः। गुरु को ब्रह्म स्वरूप में ही जानना चाहिए। जिनकी शरण में जाने से जीव पूर्णता का अनुभव करते करते भवसागर से पार हो जाता है, यही गुरु पूर्णिमा है। गुरु के लिए यही कहा गया है कि सब धरती कागद करो लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं

0: श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
1: बहनों, आप सुन रही थी वार्ता गुरु पर्व और इसका महत्व। हमें जानकारी दे रही थी मीरा शास्त्री। गुरु है शिक्षा का सागर, गुरु बांटे ज्ञान बराबर, गुरु है मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा।

बहनों, डिजिटल दुनिया ने हमें बहुत सुविधा प्रदान की है। हमारे समय, धन और शारीरिक तौर पर काफ़ी राहत भी मिली है। अब कुछ ही सेकंड में हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। लेकिन बहनों, जहां हम बड़ों को सबको बहुत सुविधा मिली है, वहीं पर हमारे बच्चों की व्यस्तता भी काफ़ी बढ़ गई है। बच्चे आज की दुनिया में केवल फ़ोन के दीवाने, मोबाइल के दीवाने हो गए हैं और बच्चों की दुनिया बहुत सीमित हो गई है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी डिजिटल दुनिया में खो गए हैं। बच्चे ना तो आज के समय में आउटडोर गेम खेलना पसंद करते और ना ही इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं और ना ही किसी के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आज के समय के बच्चे घर में अपने माता पिता के साथ भी समय बिताना पसंद नहीं करते हैं। उनका केवल एक ही मोटिव हो गया है कि हमें केवल फ़ोन में व्यस्त रहना है। बच्चे घंटों फ़ोन चलाते रहते हैं, ऐसे में ना तो उनको भूख लगती है और ना ही पढ़ाई की चिंता होती है। इसी कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को नई नई बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में हम अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम और डिजिटल आदतों को सही दिशा दें। माता पिता को नियम तय करने, खुद मिसाल बनने और निगरानी रखने का काम करना चाहिए। बहनों, कम से कम 2 साल का बच्चा जब तक हो, जब तक उसे स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखाएं, क्योंकि उसकी आंखों पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। और बड़े बच्चों का भी समय निर्धारित करें। इसके साथ ही माता पिता भी समय निर्धारित करें। जब बच्चे माता पिता के साथ हों तो वो भी स्क्रीन से दूर रहें, क्योंकि नहीं तो बच्चे वो भी सीखते हैं। खाना खाते समय या सोने से पहले फ़ोन या टीवी नहीं दिखाएं। बच्चा टीवी या मोबाइल पर क्या देख रहा है, इस बात की भी पूरी नज़र रखें, क्योंकि बच्चा कोई गलत सीन या हिंसक कोई कार्यक्रम तो नहीं देख रहा। बहनों, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए माता पिता को बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ खेलें, कहीं बाहर घूमने जाएं और बच्चों की पढ़ाई के समय भी बच्चों की मदद करें। देखें कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बच्चों को ये भी लगता है कि हाँ, हमें कोई देख रहा है। बहनों, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए हम महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम माँ ही हैं जो बच्चों की हर आदतों को अच्छी तरह पहचानती हैं। तो बहनों, छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर अपने बच्चों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाएं, कुछ इस तरह।

इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। बहनों, चलते चलते हम तो बस यही कहना चाहेंगे, यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है जिंदगी, विचार करके तो देखो संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। इसी के साथ अनुमति दीजिए नीतू को, नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं वनिता लोक। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत था फिल्म हाथ की सफाई से। बोल गुलशन बावरन लिखे, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इज्जत फिल्म के लिए इस गीत को आवाज दी मोहम्मद रफी ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म है ज्योति बने ज्वाला, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्यास बुझ रही है।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says center to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And now the news in detail. The Lok Sabha continued discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Participating in the discussion, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said the education system in the country has now become very expensive. He alleged the money spent on conducting NEET UG examination is more than the education budget of the country. Mr. Gandhi said that the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi against the Union Home Minister Amit Shah. Mr. Rijiju demanded that Mr. Gandhi should apologize in the House for his remarks. The discussion is underway.
3: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
2: Meanwhile, the Lok Sabha is adjourned till 2:30. Earlier, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the parliament, stating that it

0: 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species, but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2: इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन कंजर्वेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 2226 टू ओवर 3600 टाइगर रिजर्व्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 47 टू 58 एंड एलिफेंट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 28 टू 32 अंडरस्कोरिंग द कंट्रीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 26 टू 100
1: डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई.
0: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा. सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है. गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी. भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की. कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए. पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई. और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में. अब समाचार विस्तार से. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई. ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है. विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके. इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा. केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था. चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है. वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता

0: राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, हाँ। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम

0: के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
3: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70

0: 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी, श्रोता हुए मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि

0: उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
1: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
1: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
1: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक

लोगों का योगदान है। लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ,
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ। हाँ शाबाश, ऐसे ही लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए। यहाँ?
2: हाँ, आइए, इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा इधर।
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:30 वे हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज संपूर्ण भारत में और यहां तक कि विश्व में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू संस्कृति में गुरु को हमेशा से ही भगवान के समान स्थान दिया गया है। गुरु की महत्ता को इस बात से भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में आषाढ़ माह की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम समर्पित है। वैसे तो हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा विद्यार्थियों के लिए, शिष्यों के लिए खास होती है। गुरु पूर्णिमा पर चर्चा से पहले हम गुरु को समझ लेते हैं कि गुरु क्या है, गुरु कौन है। दोस्तों, गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, अर्थात जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए वही सच्चा गुरु होता है। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा से लेकर वर्तमान में आधुनिक शिक्षण प्रणाली में गुरु का स्थान आज भी वही है जो शुरू में था, आरंभ में था। गुरु सिर्फ हमें विषय का ज्ञान नहीं देते, बल्कि समाज में जीने, नैतिकता, अनुशासन और आदर्शों का पाठ भी पढ़ाते हैं। संत कबीरदास का दोहा गुरु की महिमा को बखूबी बताता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद तियो बताए। दोस्तों, ये दोहा दो पंक्तियों में ही गुरु के महत्व को रेखांकित कर देता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गुरु पूर्णिमा के दिन ही सप्तऋषियों या अपने सात अनुयायियों को अपना ज्ञान प्रदान किया था। इसी कारण भगवान शिव को गुरु भी कहा जाता है और गुरु पूर्णिमा का दिन उनके और उनकी शिक्षाओं के सम्मान में मनाया जाता है। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन धर्म के 23वें तीर्थकर महावीर स्वामी अपने पहले अनुयायी को प्राप्त करने के बाद इसी दिन गुरु बने थे। इस प्रकार जैन धर्मावलंबियों ने महावीर के सम्मान में ये उत्सव मनाया। वहीं दूसरी ओर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के 5 सप्ताह बाद इसी दिन अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए बौद्ध धर्मावलंबी गौतम बुद्ध के सम्मान में ये उत्सव मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए हम सब मिलकर करते हैं ये गुरु वंदना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आइए अब आपको सुनवाते हैं झलकी। शीर्षक है गुरु दक्षिणा, आलेख गोपाल सक्सेना का है, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है।

0: लो एक और आ गया।
1: ये तो संसार रूपी सागर है बच्चा।
0: ठीक कहते हैं बाबा,
1: यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है। जो प्राणी अच्छा कार्य करने के पश्चात शरीर को त्यागता है, उसे जमाना याद करके आंसू बहाता है।
0: ये पाप और पुण्य क्या है बाबा?
1: जिस कार्य को करने के पश्चात यदि मन पछताए तो वो पाप होता है।
0: और यदि किसी गलत कार्य को करने के पश्चात मन ना पछताए तो?
1: तो वो पाप नहीं होता। इसे देख रहा है,
0: क्या बाबा?
1: पूरे 5 मंजिला हाड़मास की इमारत को, इसमें बाथरूम, किचन, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, कैमरा, धनकाटा और न जाने कितने डिपार्टमेंटों को उस परम पिता परमात्मा ने इस काया में फिट कर रखा है। हर बात का उत्तर स्वयं से ही प्राप्त हो जाता है।
0: हाँ बाबा, आप सच कह रहे हैं। आपने आपने सचमुच मेरी आंखें खोल दी।
1: अगर अब भी इस भेजे में नहीं घुसी हो तो बाबा श्री श्री श्री श्री 1001 अर्थात लाखों में एक बाबा संकट मोचन चमत्कारी का एक ही गुरु मंत्र सदा याद रखना।
0: कौन सा बाबा, उसे भी बतला दीजिए ना।
1: तो ध्यान से सुन।
0: जी बाबा।
1: देख,
0: जी।
1: ना तो किसी की आत्मा को दुखा और ना किसी की बददुआओं को ले, बस यही तेरा सच्चा भजन है।
0: बाबा, एक शंका का और समाधान कीजिए।
1: कौन सी शंका बच्चा?
0: बाबा, मरने के बाद इंसान कहाँ चला जाता है?
1: वो तो मरने के पश्चात भी यहीं पर रहता है। वो हम सबको देख सकता है किंतु हम उसको नहीं देख सकते। वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हर यंत्र उसके आगे फेल है।
0: ये जो मुर्दा अभी आया है बाबा, क्या क्या वो भी अर्थी में शामिल है?
1: अवश्य अवश्य बच्चा, मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखकर बतलाता हूं।
0: अच्छा, तो ये सब काजल का चमत्कार है। शायद शायद इसे लगाकर देखने से आत्मा भी दिखने लगती है। बाबा भी कोई ऐसा वैसा नहीं लगता, चमत्कार ही लगता है।
1: सुन रहे बच्चा? अरे
0: हाँ बाबा।
1: कहाँ पहुंच गया भाई? लगता है 99 के झमेले में फंस गया है।
0: हाँ हाँ बाबा, बतलाइए।
1: सुन।
0: जी बाबा।
1: मुर्दनी के साथ में आए हुए हर व्यक्ति के पास वो बारी बारी से जाकर चीख चीख कर उनसे कह रहा है।
0: क्या कह रहा है बाबा?
1: ये आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे इस अर्थी पर क्यों लिटा दिया? क्या सब पागल हो गए हो? लगता है सबके सब बहरे भी हो गए हैं। अरे कानों में रुई ठूस रखी है क्या? मुझे अर्थी से जल्दी उतारो।
0: बाबा, क्या उन्हें सुनाई दे रहा होगा?
1: तू तो सचमुच का बुद्धू है रे।
0: क्यों बाबा?
1: अबे धूर्त, उसकी आवाज भी उसी अनुपात में सूक्ष्म हो जाती है जिसे सुनना असंभव है।
0: लेकिन लेकिन बाबा, आप उसे देख भी रहे हैं और वो जो कह रहा है उसे आप सुन भी रहे हैं।
1: अबे मेरे कमंडल, ये सब जप तप क्रिया साधना से दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं जिससे सब कुछ देखा और सुना जा सकता है। इन साधनाओं को गृहस्थ में रहकर करना असंभव होता है।
0: बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है बेटा। ये बाबा पहुंचा हुआ सिद्ध लगता है। माथे पर सिंदूर, गले में घंटी और शरीर पर मुर्दे की भस्मी लगी है। इससे अच्छा और कौन गुरु मिलेगा? बाबा बाबा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ।
1: परंतु मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता।
0: क्यों बाबा? बाबा, मैं आपको अपना गुरु बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ।
1: अच्छा, तो मुझे अपना गुरु बनाना चाहता है?
0: हाँ बाबा।
1: तो सुन, तेरे पास इस वक्त 10,000 रुपया गुरु दक्षिणा में देने को है।
0: 10,000 रुपया?
1: तब तो मैं तेरा गुरु बनना स्वीकार करूंगा। समझा? चल जा।
0: बाबा, इस वक्त तो मेरे पास जहर खाने तक को पैसा नहीं है। मैं
1: अगर शिष्य बनना है तो पैसे की व्यवस्था कर। समझा?

0: अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे दिमाग तो ठीक है आपका?
1: पूनम जो मैं कर रहा हूँ उसे सिर्फ देखती रहो।
0: ओफो, अब कुछ बताओगे भी या यूं ही सारा सामान फेंकते रहोगे?
1: देखो तुम,
0: अभी अभी मैंने सारी चीजों को सजा संवार कर रखा था और एक आप है सब सामान तितर बितर करके कबाड़ खाना बना दिया।
1: पूनम मुझे अभी 10,000 रुपए और चाहिए।
0: हे भगवान, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? जब देखो तो रुपए चाहिए रुपए चाहिए। अजी मैं कहती हूँ सिर में छुपाने को तेल नहीं। चले हैं मगौड़े से एक नई बातें करने।

0: ओहो, अब कुछ बताओगे भी या यूं ही सारा सामान फेंकते रहोगे?
1: देखो तुम,
0: अभी अभी मैंने सारी चीजों को सजा संवार कर रखा था और एक आध है सब सामान तितर बितर करके कबाड़ खाना बना दिया।
1: पूनम मुझे अभी 10,000 रुपए और चाहिए।
0: हे भगवान, कहाँ से लाऊं इतना पैसा, जब देखो तो रुपए चाहिए रुपए चाहिए। अजी मैं कहती हूँ सिर में छुपाने को तेल नहीं, चले हैं मगौड़े से एक नई बातें करने।
1: देखो तुम,
0: अरे मेरे पास क्या कोई पैसों का पेड़ लगा है जिसमें से झाड़ कर दे दूं? आप 10-10 करके 3 बार ले जा चुके हो, पता नहीं क्या कर रहे हो पैसों का।
1: ये देख, देख इधर देख, अब देखती क्यों नहीं, जो भी हुंडी आज तक ले जा चुका हूं वो सब ये है, बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं। पहले बाबा ने दक्षिणा में 10,000 मांगे थे, मैं 10,000 लेकर पहुंचा तो वो बोले 20,000 होंगे, जैसे तैसे 20 का इंतजाम कर पहुंचा तो 30,000, इस बार 40 मांगते ही तुरंत सामने रख दूंगा जिससे 50,000 ना कह दें।
0: अरे तो क्या आपको कोई दूसरा गुरु नहीं दिखता?
1: ओ, देखो पूनम तुम
0: अकेला क्या वही एक गुरु बनाने को रह गया इस दुनिया में?
1: मैं क्या समझाऊं तुमको।
0: ऐसा करो जी, आप मुझे और गुरु दक्षिणा में ले जाकर उन्हें ही दे दो।
1: देखो तुम,
0: तभी आप सच्चे शिष्य माने जाओगे। किताबों में एकलव्य की कहानी के बराबर में ही तुम्हारी कहानी छपेगी।
1: पूनम देखो, देखो तुम बेफजूल की बातें तो करो मत। इस बात को तुम भली प्रकार से जानती हो कि जिस बात पर मैं अड़ जाता हूँ तो उसे पूरी करके ही दम लेता हूँ।
0: आपने यदि गर्भुक तमाशा देखने की ठान ही ली है तो वही वही सिर्फ 8,000 रुपए मेरे पास और हैं, जिन्हें और ले जाइए।
1: 8,000 है तुम्हारे पास? अरे वाह, वही वाह, मान गया, वाकई वाकई यदि पत्नी हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी।
0: अब और अधिक मस्का मत लगाइए, ये लीजिए पूरे 8,000 हैं।
1: लाओ लाओ मुझे दे दो। लेकिन आप 2,000 कहाँ से लाऊं? देखो पूनम, तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है ना, उसे और दे दो।
0: देखिए जी, अब इसमें नजर मत गड़ाइए।
1: इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है, काफी कोशिशों के बावजूद इस कदम को उठाने पर मजबूर हुआ हूं मैं। चुपचाप ऐसे उतार कर दे दो, समझी?
0: नहीं नहीं,
1: मैं कहता हूं दो ना इसको।
0: इसे मैं नहीं दूंगी।
1: पूनम तुम समझने की कोशिश करो।
0: यही तो एक निशानी बची है जी।
1: ओफ,
0: मत ले जाइए इसे।
1: मैं कहता हूं
0: भगवान के लिए इसे मत ले जाइए।
1: छोड़ इसे, चलाट छोड़ जल्दी से।
2: इनका पीछा करके देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है।
3: जय शंकर की बाबा।
4: जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की,
3: जय शंकर की बाबा। लीजिए बाबा, पूरे 30,000 हैं। बाबा आप तो अपना शिष्य बना लीजिए मुझे।
5: 30,000?
3: जी हाँ।
5: अब पूरे 40,000 देने होंगे, वरना भागता रह परछाई के पीछे।
3: लेकिन बाबा आपने।
5: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जितनी देरी करेगा उतना ही पैसा बढ़ेगा, हर चीज की कीमतें भाग रही हैं। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
1: बेटा गोविंदा, 10 से 40 तक तो गाड़ी पहुंच ही चुकी है, कहीं बाबा 50 पर ना अड़ जाए। जल्दी से निकाल कर इसके सामने पटक दे बेटे, बाबा भी अड़ियल ही लगता है।
3: लीजिए बाबा, पूरे 40,000 की रकम है, गिन लीजिए आप।
5: ठीक है ला दे,
3: लीजिए
5: सब गिन ली। अब तो जा बच्चा, कल आना।
3: जो आज्ञा गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।
5: कौन?
3: मैं गोविंदा।
5: अच्छा गोविंदा बेटे।
3: हाँ,
5: तुम आ गए। आ बेटे आ। बेटा मैं तेरी गुरु भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए।
3: गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही सब कुछ है मेरे लिए।
5: अरे मांग ले बच्चा मांग ले, नहीं फिर पीछे से पछताएगा।

0: मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप कौन है सुंदरी? कहां से आई है? आपको क्या कष्ट है?
1: जहां तुम बैठे हो वो शमशान है। हम इस शमशान की रानियां हैं। यहां पर हमारा हुक्म चलता है। यहां पर रहने वाले भूत प्रेत जिन पिशाच चुड़ैल मशान सब की सब हमारे गुलाम हैं।
0: लेकिन हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा।
1: क्योंकि हमारी भी एक दुनिया है। हमें भी अपने मिलने जुलने वालों के पास आना जाना पड़ता है। लेकिन तुम हमारी गैर मौजूदगी में यह ढोंग रचा रहे हो।
0: क्या मुसीबत गले लग गई? लगता है ये ब्रह्म राक्षसनी है। कहीं पैरों को पकड़कर जमीन पर धोबी पछाड़ ना कर दे। पिताजी के पिताजी कहते थे कि इन्हें अगर पस में करना हो तो इसकी चुटिया को कस कर पकड़ लो।
2: अरे अरे ये क्या हो रहा है?
0: पहले मेरी दाढ़ी छोड़। पहले मेरी दाढ़ी
1: अरे भाग किधर रहा है? देख किधर देख, अपने गुरु के चौकटे को। यह रही इसकी दाढ़ी और ये रही इसकी मूंछ और जटा।
3: अच्छा तो आप समझा?
0: नहीं नहीं भैया,
3: निकाल जल्दी से मेरे 40,000।
0: मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
3: आऊंगी?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे भैया मुझे माफ कर दो।
3: 40,000
0: ये लो अपने 40,000 रुपया। मुझे माफ कर दो, अब आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा भाई। मुझे माफ करो भैया।
3: नहीं करूंगा,
0: मुझे माफ करो।
2: हमने अपने चेहरे पर मुखौटे लगाए हुए हैं, अब देखो।
3: अरे पूनम तुम?
2: हाँ मैं, और यह रही आपकी गुरुआइन।
3: गुरुआइन
2: अर्थात गुरुजी की पत्नी।
3: ओह,
1: आज के बाद हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। यदि रखना चाहते हो तो हमारी कुछ शर्तें स्वीकार करनी होंगी। बोलो मंजूर है?
4: हमें मंजूर है।
2: आज से हम अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो,
4: आज से हम अपनी पत्नियों से झगड़ा नहीं करेंगे।
1: हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की सलाह से कार्य करेंगे।
4: हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की सलाह से कार्य करेंगे।
2: मेहनत से जी नहीं चुराएंगे।
4: मेहनत से जी नहीं चुराएंगे।
1: अब हम तुम्हारे साथ रहने को तैयार हैं। अच्छा बहनों और भाइयों, शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। अब हम विदा लेते हैं।
4: जय शंकर की।
5: आपने सुनी गोपाल सक्सेना की लिखी झलकी गुरु दक्षिणा। इसमें भाग लिया था प्रमोद शर्मा, ज्योत्सना लता शर्मा, अशोक दीक्षित, विजय दीक्षित, गोपाल प्रसाद वाष्णेय और राजेश श्रीवास्तव ने। प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की थी।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे झलकी गुरु दक्षिणा, और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। आज 29 जुलाई है और इस दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य है बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना। बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय

0: पशु ही नहीं बल्कि हमारे जंगलों की समृद्धि जैव विविधता का प्रतीक भी है। किसी भी वन क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि वहां का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ और संतुलित है। एक ऐसा समय था दोस्तों जब बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षित अभयारण्यों की स्थापना और जन सहभागिता जैसे प्रयासों से भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। फिर भी अवैध शिकार, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना आज भी इस विषय पर बड़ी चुनौती बनी हुई है। आइए इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि वन्य जीवों और प्रकृति के संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ भी सुरक्षित रहेंगे, और बाघ सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले ओ बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब, शम्मा हूँ नहीं, जलूंगी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0: पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में
1: वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
1: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे पशु पोषण में खनिज लवण और खेतों में जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकी। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय होगा बरसाती सब्जियों की खेती में समस्याएं और समाधान। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर धनराज शर्मा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण समय होगा 6:45। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रजवार्ता, ब्रज में गुरु पूर्णिमा का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नीता सिंह।

संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:15 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का सुहाने तराने कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण, रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देशगान का। आइए सुनते हैं समवेत स्वरों में गोपाल रंजन सिन्हा की ये देशभक्ति परक रचना।

मिलकर साथ चलें तो साथी राही मंजिल बन जाएं। समवेत सुरों में अभी आप सुन रहे थे गोपाल रंजन सिन्हा की यह देशभक्ति।

मैं रख रचना और इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

ब्रजग्रामीण कार्यक्रम सुनने बारे सभी भैया बहनान में मृणालिनी बहन की राम राम। भैया वो आज तो गुरु पूर्णिमा है, बाकी भी राम राम भैया। भैया कार्यक्रम में सबसे पहले हम और आप बातचीत करें, चर्चा करें हैं पशुओं पोषण में खनिज लवण को एक महत्व, पशुओं के स्वस्थ जीवन के काजे, शारीरिक विकास, दुग्ध उत्पादन, प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के काजे खनिज लवण बहुत ही आवश्यक हुए हैं। मुख्य रूप से ये हड्डी दांत को मजबूत करें, पाचन क्रिया को सुधारें और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावे हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पशुओं की हड्डी और दांतन को मजबूत बनावे हैं। ऊतक निर्माण या शरीर के कोमल ऊतकों और मांसपेशियों के कामकाज को भी नियंत्रित करें हैं। और भैया उजाई के साथ साथ पशुओं में उत्पादन और कार्यक्षमता को बढ़ावा करें हैं। दुग्ध उत्पादन में कैल्शियम फास्फोरस की उचित मात्रा से दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा गुणवत्ता बनी रहे हैं, पाचन शक्ति अच्छी रहे है और पेट की पाचन शक्ति को जे तीव्र भी करें हैं। और जाई के साथ साथ भैया खनिज लवण का प्रयोग करवे थे स्वस्थ और प्रजनन कहो जाए ना अच्छा रहे, प्रजनन क्षमता बढ़ जावे। खनिज लवण पशु की प्रजनन शक्ति में बढ़ावा करें हैं और समय पर गर्भ धारण करवे में मदद भी करें हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जावे, जिंक, कॉपर, आयरन जैसे सूक्ष्म खनिज पशुओं को एनीमिया और अन्य बीमारियों से बचावे हैं। तो भैया जहिले अपने पशुओं के भोजन में खनिज लवण का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे कि वे स्वस्थ बने रहें और उनसे जो उत्पादन आप पशुपालन करने वाले भैया ले रहे हैं वो अधिक से अधिक ले सकें और लाभ मिल सकें। ये तो रही भैया आज की चर्चा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी भी दे पाएंगे, लेकिन भैया बातें पहले, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हमारे यहाँ हिंदू संस्कृत में कहा भी जावे कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भैया गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज आप आनंद लें गुरु पूजा को जा लोकगीत के माध्यम से।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे कन्हैयालाल शर्मा रसिक के स्वर में जालोक गीत को श्री गुरुदेव शरण तेरी आयो। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दिलवाएंगे डॉक्टर धनराज शर्मा से बरसाती सब्जियों की खेती में समस्या और समाधान।
1: वर्षा ऋतु की जो सब्जियां हैं उनमें प्रमुख रूप से लौकी, तुरई, करेला, टिंडा, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, प्याज, ये सब्जियां इन दिनों में चल रही है। इस मौसम में सब्जियों की खेती करने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, तो खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने जो सब्जियां लगा रखी है उनमें समय समय पर निराई गुड़ाई करके एक तो खेत को बिल्कुल साफ रखना है, दूसरा बरसात के मौसम में बारिश कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है।

उसकी वजह से खेत में पानी भर जाता है। तो अपने जो खेत आपने सब्जियां लगा रखी है उस खेत को इस तरह समतल रखो और नालियां बनाकर इस तरह से रखा जाए कि उसमें जो अधिक पानी हो अपने आप निकल जाए, पानी का निकास अच्छी तरह से हो जाए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि इस मौसम में ज्यादा नमी रहती है, नमी की वजह से बहुत सारे कीड़े बीमारियां फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब अपन चर्चा करेंगे कि इस मौसम में मतलब सब्जियों में कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनका हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले अपनी सब्जी पहले लेते हैं अपन बेल वाली सब्जियां। बेल वाली सब्जियां जैसे आपने देखा तुरई है, करेला है, टिंडा है, इनमें फल मक्खी जो कीट है वो लगता है, उसकी वजह से फल काणे पड़ जाते हैं। काणे पड़ जाते हैं तो ऐसे फल अगर मार्केट में ले जाएंगे तो वो बिकेंगे नहीं। तो इसकी रोकथाम के लिए अपन को क्या करना है, इसकी रोकथाम के लिए एक मेलाथियन दवाई आती है बाजार में 50 cc की, इसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर अगर छिड़काव करें तो ये आपके जो कीड़ा लगा है जो काणे फल करता है ये आपके काणे नहीं पड़ेंगे। दूसरा, बेल वाली फसलों में एक तुलसीता रोग या झुलसा रोग भी लगता है जिसकी वजह से पत्तियों की जो नीचे की सतह पर कवक की ग्रोथ आ जाती है और पौधा मुरझाने से लग जाता है, कई बार पौधा झुलसने भी लग जाता है। इसकी रोकथाम के लिए एक दवाई आती है बाजार में मैनकोजेब, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो इस रोग से आपको काफी मतलब कंट्रोल हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या टमाटर बैंगन मिर्च में आपने देखी होगी, टमाटर मिर्च में इन दिनों में जो पत्तियां एकदम मतलब मुड़ जाती है, जिसे हम कुकड़ा रोग भी लोकल भाषा में बोलते हैं, कोई कुकड़ा रोग बोलता है कोई दूसरा, जैसे ये रोग फैलाने में सबसे बड़े जो मक्खी है वो सफेद मक्खी होती है, सफेद मक्खी से ये कीट मतलब रोग ज्यादा फैलता रहता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी रोकथाम अगर शुरू से आप करते हैं, इसका जो इन्फेक्शन है वो अपन जब पौध तैयार करते हैं उसी टाइम से शुरू हो जाता है। तो एक तो जब आपने नर्सरी तैयार करती उस समय अगर आप उसमें थोड़े से दवाई वगैरह डाल देते तो ठीक रहता, लेकिन अब ऐसी समस्या आ रही तो कुछ जो पौधे जो पत्तियां मुड़ रही है कुछ पौधे हैं तो उनको उखाड़ के या तो निकाल के अलग कर दो। उसके अलावा आप इसमें एक दवाई आती है मेलाथियन को आप स्प्रे कर सकते हो, फास्मोमिडोन दवाई है उसका 0.3 ml प्रति लीटर में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपका जो पत्ते बनने वाला जो ये रोग आगे फैलेगा नहीं और उसमें आपका सही रहेगा। इसके अलावा टमाटर बैंगन मिर्च में जैसे देखो आजकल चेपा बहुत लग रहा है जिसको एफिड भी बोलते हैं, हरा तेला भी लगता है, सफेद मक्खी, इन सब की रोकथाम के लिए आप सबसे बढ़िया जो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं इनकी रोकथाम के लिए फास्मोमिडोन दवाई 85 SL के नाम से आती है बाजार में, जिसकी 0.03 ml मतलब 3 लीटर पानी में अगर 1 ml दवाई मिला के हम छिड़काव करें तो ये आपके सारे कीड़े इस तरह के खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपने टमाटर में जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, टमाटर में पर्ण कुंचन पत्ते जिसको पत्ते मुड़ने वाला रोग कहता है, विषाणु रोग भी लगता है, इसकी वजह से पत्तियां जो पूरी सिकुड़ जाती है और झुर्रियां पड़ जाती है, पत्तों पर कभी कभी हल्के रंग के पीले धब्बे भी पड़ जाते हैं, इनकी रोकथाम के लिए भी हम डाइमेथोट 30 cc 1 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो ये रोग नियंत्रण कर सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बैंगन के बैंगन सड़ने लग जाते हैं, पत्तियों पर काले काले रंग के धब्बे पड़ते हैं, एंथ्रेक्नोज रोग कहते हैं, फल भूरे रंग के भी धब्बे पड़ जाते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हम मैनकोजेब दवाई काम में ले सकते हैं जिसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। कई बार हमने देखा जैसे भिंडी आजकल बहुत चल रही है तो भिंडी में भी आपने देखा होगा काणी पड़ जाती है, काणी पड़ने की वजह से बाजार के अंदर उसके मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है एकदम। तो इसकी रोकथाम के लिए हम जिस फल जैसे कोई चीज में फल आ रहा है उस समय हमें ऐसी सेफ दवाई काम में लेनी जो दूसरे पब्लिक जो खरीदार लेता है या कंज्यूमर लेता है उसको नुकसान नहीं पहुंचे। तो मेलाथियन दवाई बिल्कुल सेफ है, आप इसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो आपका कीड़ा भी रुक जाएगा और आप 2-3 दिन बाद इसको तोड़ के बाजार में भी ले जा सकते हो। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, जब आप कोई भी दवा छिड़के फसल के ऊपर तो जितनी सब्जियां जो पहले आपने लगा रखी है उसको सारी को तोड़ लें, तोड़ने के बाद आप स्प्रे कर फिर 2-3 दिन उसको रोक के बाद में आप बाजार के अंदर ले जाना चाहिए आपको। इसके अलावा जो आजकल जिन किसान भाइयों ने जो शुरू में अपन जो खेती करते हैं सब्जियों के आधी नाइट्रोजन की मात्रा पहले देते हैं और आधी बाद में देते हैं, तो जैसे आपने बेल वाली जो फसल लगा रखी थी आपने आधी नाइट्रोजन तो उस समय दे दी, उसके बाद अब आपको जो आधी नाइट्रोजन बची मात्रा उसको 2-3 भाग में 2 भाग में मतलब

0: पहले 30 दिन में, दूसरी 50 दिन पर उसको टुकड़ों के अंदर देंगे खड़ी फसल के अंदर, तो वो पूरी पूर्ति हो जाएगी नाइट्रोजन की। ऐसे भिंडी की फसल में भी जो आपने पहले नाइट्रोजन दी होगी उसके बाद में बची हुई नाइट्रोजन अब देनी है। ऐसे सारी फसलों के अंदर टमाटर बैंगन मिर्च में भी यही करते हैं, जैसे आपने पौध की रोपाई करी उस समय आधी नाइट्रोजन दी, आधी जो बची उसको 30 दिन बाद और 50 दिन बाद टुकड़ों में देंगे और उसके बाद हल्की सिंचाई करेंगे। अब कभी कभी क्या बरसात का पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है, बारिश नहीं पड़ती, तो हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई नहीं करेंगे तो सब्जी उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो टाइम टाइम पर जैसे बरसात आती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई लंबा गैप पड़ जाए तो आप उसमें सिंचाई भी करें और इन दिनों में खेत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जो किसान भाई इन दिनों में अगर सब्जियों की पौध तैयार करना चाह रहा है तो उनको मेरी ये है कि वो जो क्यारी बनाए तो जमीन से उठी हुई बनाए, क्योंकि बरसात का पानी भर जाएगा तो पौध आपकी गल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जमीन से करीब 6-7 इंच क्यारी उठी हुई बनाए और उस क्यारी की मिट्टी को आप कैप्टन थायरम दवा से भी उपचार कर लें। बीज को बोने से पहले कैप्टन थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार कर लें। इसके अलावा कई बार हमने जो अभी जो कीड़ों की बात कर रहे थे, जिस पत्तियां मुड़ जाती है, तो इसके लिए भी आप कार्बोफ्यूरान के अगर 8-10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी के अंदर ही ये मिला दे ग्रेनुलर दाने, तो ये आपके जो बाद में जब बीज की पौध तैयार हो वो पौध हेल्दी होगी और उसमें किसी तरह की बीमारी वगैरह कम आएगी। आ तो सकती 100% गारंटी तो नहीं, लेकिन उसको हम बाद में दवा छिड़क कर इलाज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम इन जो मेन जो दवा जैसे भिंडी एक नए प्याज की जो खरीद की अपन बात करें, प्याज में हमने कृषि विज्ञान केंद्र को मैं 4-5 OFT लगाई थी, तो उसमें हमने ये पाया था कि अगर 50 दिन बाद बाजार में एक सोल्यूबल फर्टिलाइजर था मल्टी के नाम से, इस मल्टी के में क्या होता है 13% नाइट्रोजन होती है और 45% पोटास खाद होती है। ये 1 किलो की पैकिंग के अंदर मार्केट के अंदर मिल जाता है। इसको आपको प्याज की जो आप रोपाई करते हो या गंठी वाला कोई प्याज लगा रखा है तो 50 दिन बाद और 50-55 दिन पर 10 ग्राम ये मल्टी के को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अगर छिड़काव करें तो प्याज की आपकी साइज भी बढ़ेगी और आपकी उसकी पैदावार भी ज्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर जो मैंने समस्या बताई थी मेन जो कीड़ा लगने वाली है, फल काने होने वाली है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां और लगती है, बहुत सारी बीमारी जैसे पाउडर मिल्डू रोग लग जाता है, मौसम लगातार बरसात का रहता है, तो उसकी रोकथाम के लिए केराथिन दवाई काम में लेनी चाहिए उनको। 1 ml प्रति लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो ये पाउडर जो मिल्डू है उसका आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो अगर हम इन बीमारियों को, कीटों को और खेत की साफ सफाई रखेंगे तो खरीफ की सब्जियों से हम अधिक उत्पादन ले लेंगे।
1: भैया अभी आप जानकारी ले रहे डॉक्टर धनराज शर्मा थे, बरसाती सब्जी इनकी खेती में समस्या और समाधान। हमें उम्मीद है कि इनकी दी हुई जानकारी को लाभ हमारे किसान भैया बहन जरूर उठाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दे पा रहे हैं बालकिशन भारती के स्वर में जालू गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे बालकिशन भारती के स्वर में जालू गीत को, दर दर क्यों भटकावे मेरे नाथ। भैया आगे भी हम आपको लोकगीत को आनंद बाते रहेंगे, पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। बरसात को चौमासो शुरू होवे वालों, चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है और कल ते सावन लग जाएगा, तो चौमासे में बरसात तो पड़े ही है, तो बरसात से पहले थोड़ी सी सावधानी अगर हम रखें तो अपने फसल उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ भी ले पावे हैं। अब खेतन में जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक को अपनाने से बहुत फायदा हुआ है। खेतन में पानी बचावे के काजे ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, मल्चिंग तकनीक सबसे मुख्य आधुनिक तकनीक रहे हैं, और अगर इन तकनीकों का प्रयोग हम अपनी खेती में करें तो फसल अच्छी हुए हैं। और जाई के साथ साथ जब नई तकनीक का प्रयोग करें तो नई तकनीक में हम बरसात के जल के संरक्षण को भी कर सके हैं कि बरसात का पानी ज़्यादा हमारे खेत के काजे हानिकारक भी ना रहे, लाभकारी रहे। जागे काजे भाई तेज़ी से अगर पानी है तो पानी निकासी को भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जाई के साथ साथ और खेत में पानी बना भी रहे, थोड़ी फसल के लिए जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमें खेत का मेड़बंदी करनी चाहिए और आधुनिक तकनीक को भी अपनानी चाहिए जिससे हम पानी की बचत भी कर सकें। ड्रिप सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, और खेत को समतल करके लेजर मशीन से खेत को एकदम सीधा किया जावे जैसे हर कोने में पानी एक जैसा रहे, कहीं भरे नहीं जैसे फसल गले नहीं। मल्चिंग है, और खेत में अगर हम नमी बराबर बनी रहे तो जाके काजे भी आजकल बहुत से आधुनिक तकनीक ऐसी आ गई हैं जैसे हम नमी की जानकारी ले में और खेत को ध्यान रखें। बारिश के फालतू पानी को खेत के एक बड़े हिस्से में बने तालाब में इकट्ठा कर देना चाहिए ताकि वो पानी हमारे समय पर काम आ सके।

ये सूखा पड़ने पर जई पानी से अगर हम सिंचाई करें तो हमारे फसल के लिए बहुत लाभकारी रहे हैं। तो भैया ये तो रही आगे की चर्चा बातचीत, अब बातचीत हम आगे करते भी रहेंगे, बातें पहले आनंद लें जालो गीत को।

भैया आप यह पैनल ले रहे हैं ऋषि शर्मा के स्वर में जालोक गीत को ब्रज के तुम हो आधार जय गीत के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मृणालिनी दीक्षित ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

लता मंगेशकर और दिलराज कौर के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे आलाप फिल्म से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये भक्ति रचना। संध्या की ये पावन बेला आत्ममंथन, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश लेकर आती है। जब मन प्रभु के श्री चरणों में विनम्र होकर झुकता है, तब जीवन की राह भी सरल और प्रकाशमय बन जाती है।

अभी आप सुन रहे थे पुष्पा बगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के सुरों में अंकुश फिल्म से अभिलाष की ये भक्ति रचना। संगीत निर्देशन कुलदीप सिंह का था। गुरु

पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ उस परम गुरु को नमन करें जो ज्ञान, करुणा और प्रेम का अनंत स्रोत है।

ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वे हमें सत्य के मार्ग पर चलने, मानवता की सेवा करने और सदैव उत्तम कर्म करने की शक्ति प्रदान करें।

मन्ना डे और साथियों के स्वरों में सीमा फिल्म से शैलेंद्र की रची ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे, शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में। संध्या वंदन के इस पावन अवसर पर आइए प्रभु की शरण में अपने मन को विनम्रता, करुणा और सद्भाव से भरें।

0: लता मंगेशकर और साथियों के सुरों में अभी आप सुन रहे थे दो आंखें बारह हाथ फिल्म से ये भक्ति रचना। रचना थी पंडित व्यास भरत व्यास की और संगीत निर्देशन वसंत देसाई का था। इसी रचना के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ब्रज वार्ता। ब्रज में गुरु पूर्णिमा को महत्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर नीता सिंह।
5: आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहवे। जा दिन गुरु पूजा को विधान होए, जा दिन ती चार महीना तक

पर ब्राजक साधु संत एक ही जगह पर रहवे और ज्ञान की गंगा बहावे। जे चार महीना मौसम को देखतो भयो सबते अच्छी माने जाए। इन चार महीनन में न तो अधिक गर्मी होवे और न अधिक सर्दी। जे चार महीना पढ़ाई के ताई भी बहुत अच्छी माने जाए। जैसे सूरज की गर्मी ते गर्म जमीन को, बारिश ते ठंडक और फसल पैदा करवे की शक्ति मिले, ठीक वैसे ही गुरु के चरणन में जाए के भक्तन को ज्ञान शांति भक्ति और शक्ति मिले। भैया जाई दिन महाभारत के रचेता कृष्ण द्वापायन व्यास को जन्मदिन भयो, जे संस्कृत के महान विद्वान माने गए। इनने चारों वेदन की रचना करी, जाई ते इनको नाम वेद व्यास पढ़ो। इन्हें आदि गुरु के नाम ते भी जानो जाए। भक्ति काल में संत घीसा दास को भी जन्म भयो, वे कबीर दास जी के शिष्य थे। शास्त्रन में गुको अर्थ अंधकार और रुको अर्थ मानो जावे दूर करनो। गुरु को गुरु जाता ही कह जाए कि जे अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जावे। हमारे ताई गुरु कृपा भैया बहुत जरूरी है, जाके बिना जीवन में कछु नाए हैं। हम सब भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनावे। पहले जब शिष्य गुरुवन के आश्रम में पढ़वे जाते तो या दिन सबसे पहले गुरु की पूजा करते और दक्षिणा भी देके अपने आप को धन्य मानते। शिक्षा देवे बारे स्कूलन में संगीत और कला के शिष्यन में आज को दिन गुरु को सम्मान करवे को हुए। जा दिन मंदिरन में पूजा हुए, पवित्र नदियन में स्नान करके जगह जगह पर भंडारे होए और मेले लगे दिखाई दिए। हिंदू और बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्व हो गए। गुरु के बाद कोई दूसरो नाम नाए है। शास्त्रन में कहो गयो है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। जा मंत्र को मतलब है भैया कि हे गुरु, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो, आपको हमारो बार बार नमस्कार है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के पूनम को दिन गुरु पूर्णिमा को दिन मानो जाए। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही पुरानी परंपरा मानी जाए। बच्चे जब ते स्कूल जाए गले में पवित्र धागो डाल के भेजो जाए, तभी ते उनकी जिंदगी बनावे को काम गुरु ही करे। माता पिता को भी गुरु को दर्जा दियो जाए। पहले बालक शिक्षा ग्रहण करवे के ताई गुरुकुल जाते और जब शिक्षा ग्रहण कर लेते तो लौटते समय गुरु को दक्षिणा देते। जब ते परंपरा परी अब बालक शिक्षा प्राप्त करवे के ताई स्कूल जाएं और जब गुरु पूर्णिमा पर्व होवे तब गुरु को दक्षिणा देवे और साथ ही साथ गुरु की महिमा को गाएं। गुरु के बारे में भैया एक ने कहे हुए है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पताए। जाको मतलब सब जानत होंगे कि गुरु और शिष्य दोनों सामने खड़े हैं। मैं पहले कौन के पाम छू, जब ऐसी बात आई गई तो बड़ो सोचबो पड़े कि दोनों में ते कौन बड़ो है। फिर दिमाग में आए कि जाने हमें ईश्वर तक जावे को रास्ता बतायो है, वो सबते बड़ो है, यानी गुरु के समान कोई ना है। कबीर दास जी को एक दोहा और है, कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हर रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी जो अंधो है वो गुरु को ना समझ पाए, अगर ईश्वर नाराज है जाए तो भैया गुरु बचाए लेगो, और अगर गुरु ही नाराज है जाएगो तो सोचो हमारी नैया पार कौन लगावेगो। या हमारे ब्रज में गुरु को बहुत महत्व है और गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्व है, या महत्व को कोई गुणगान ना कर सके। सब

0: जानत होंगे कि हमें वेदन को ज्ञान देवे बारे व्यास जी माने जाए, वे हमारे आदि गुरु हैं। जाय लिए जा दिन को व्यास पूर्णिमा को नाम ते ये दिन जानो जाए। गुरु पूर्णिमा को पर्व हमें बड़ी श्रद्धा से मनानो चाहिए। गुरु को आशीर्वाद सब छोटे बड़े सब विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। जा दिन गुरु ही ना आए, माता पिता भाई बहन सबकी हमें पूजा करनी चाहिए। गुरु कैसो है कौन है ये जानन के ताई उनके शिष्यन को जानवो बहुत जरूरी है। गुरु को देखकर शिष्य कैसो है ये अंदाज लगायो जा सके। गुरु जैसो देवे बारो संसार में कोई नाए है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान ही वो कछु नाए दे सकें जो तुम्हें भैया गुरु दे सके। गुरु सुदर्शनाचार्य को नाम तो सबने सुनो होगो, जिनने अपनी आत्मा और प्राण दे दिए और अपने शिष्य ते कही कि बेटा अंत में अपनो शरीर मैं भी तुम्हें दे दूंगो अगर तुम्हें जरूरत पड़ी। अब शरीर के बाद देवे को और कहा बचो, जाय ताई कहो जाए कि गुरु साक्षात भगवान को रूप होवे। भैया गुरु की महिमा कोई ना जान पाए। दुनिया के सबरे संबंध जैसे बाप बेटे को संबंध, पति पत्नी को संबंध, भाई बहन को संबंध, सब शरीर ते बनवे बारे संबंध माने जाए, पर गुरु और शिष्य के बीच को संबंध शरीर को संबंध ना होए। जे संबंध आत्मा को परमात्मा ते, हृदय को हृदय ते उत्पन्न है वे बारो संबंध है। जब वही सब कछु छोड़ के हम गुरु के चरणन में अपनो समर्थन कर दें। अंत में यही मैं कहूँगी, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो दे दीनी दान। ब्रज में गुरु पूर्णिमा को कहा महत्व है, जाको वर्णन कोई ना जान पावेगो। ब्रज की लीला ही न्यारी है, जा दिन दूर दूर ते सब अपने अपने गुरुअन के दर्शन कुआ में और गुरु के दर्शन पाए के अपने आप को धन्य माने।
1: ब्रज में गुरु पूर्णिमा को महत्व, अभी आप सुन रहे थे ये ब्रजवार्ता। वार्ताकार थी डॉक्टर नीता सिंह। और अब लीजिए सुनिए गुरु को समर्पित ये लोक भजन कन्हैया लाल शर्मा रसिक के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे कन्हैयालाल शर्मा रसिक के स्वर में ये ब्रज लोक भजन। इसी रचना के साथ ही ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा आपसे थोड़ी ही देर में।

0: बताओ, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के

0: साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि नया विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
1: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: उधर राज्यसभा ने भी राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से भाजपा द्वारा आज राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
2: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने भदोही का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास की जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेका। इस अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों तक रवाना की जाएगी। इस आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघी पूर्णिमा को संत रविदास जयंती तक चलेगी। प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी, गोरखपुर, चित्रकूट, अयोध्या समेत प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरियों में गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान और पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में आयोजित आषाढ़ पूर्णिमा समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ और विरासत स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
3: देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में

0: डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअली उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित ये देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
1: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है, और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे संभालेगा।
0: कल से शुरू हो रहे श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए ये व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
2: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारी तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ओआरएस वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन, और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी। और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, स्नाते सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है, वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
0: ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। श्री सिंह ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शानदार प्रदर्शन पर उनको बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की ये ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। वहीं बदायूं में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: हम आकाशवाणी
5: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

शाम सुहानी कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। सावन की दस्तक से पहले आषाढ़ पूर्णिमा की शीतल आभा, रिमझिम फुहारों की मधुर सरगम और मिट्टी की भीनी भीनी सौंधी महक, प्रकृति के जैसे हर मन को नए उल्लास से भर देती है। ऐसी सुहानी संध्या में हम लेकर आए हैं आपकी पसंद के सदाबहार फिल्मी गीत, जिन्हें आपने अपने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। आज के इस विशेष अंक में वर्षा ऋतु और आषाढ़ पूर्णिमा की मनभावन अनुभूतियों के साथ आपके संदेश भी होंगे और आपकी फरमाइशों के मधुर गीत भी। तो आइए संगीत और अपनत्व से सजी इस खूबसूरत संध्या का आनंद लेते हैं और सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा भट्ट वालों की पौड़ाल की आवाजों में। जन्म जन्म फिल्म का ये गीत गीतकार थे मजरू और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजा था ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक। पथरिया गांव बद्रा ठाकुर से मीनू मनावी, लता अनुराग और अभिनव मरावी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नू लाल शिवा, सनीता, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाजवानी। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा, परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक और जलेश्वर नायक, इनके साथ गौरव नायक। मऊ उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। भोंगीर तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजाल, फरहान, समीरा और आजमीन। गुजरात गांधी नगर से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता लिपि और दीपाली गोप। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका रानू और रानी। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम अफजल। खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा और शशांक बाघमारे।

0: प्रेम की गहराई को शब्दों में बांटना आसान नहीं होता है श्रोताओं। जब दो दिलों के बीच विश्वास, समर्पण और अपनापन हो तो हर चुनौती छोटी लगने लगती है। ऐसे ही अटूट प्रेम की भावना को बेहद मधुर अंदाज में अभिव्यक्त करता हमारा अगला गीत, आइए सुनते हैं।
1: मैं तो

संकेत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नंगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा का संदेश मिला है। अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवारीजन। घोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसितासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, निशा और इनके परिवारीजन। जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत। खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। तिरुपति नगर नांदेड़ से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक। नासिक से विशाली, क्षमा करें, विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली। सांगली महाराष्ट्र से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह, सबाहत किरत और रेहान। दाढ़ीनादरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठी, संदीप बाठी और अमोल बाठी का संदेश में मिला है। रत्नमाला मोताला महाराष्ट्र से इनके साथ कुमकुम और विजय सुरलकर। हिसार हरियाणा से राजकुमार डोटी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डोटी। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरो और एस के पप्पी। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सरोशे, सुषमा परेथी और मायरा सरोशे। बलहर शाह से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य लोंढे। गंज डुंडवरे से कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, अयान अंसारी और उस्मान शमशुल यासीन। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज कालका से। श्रोतो, बरसात का मौसम अपने साथ केवल फुहारे नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और मिलन की मधुर अनुभूतियां भी लेकर आता है। जब मन में अपनापन हो और साथ में मधुर संगीत, तो हर पल और भी सुहाना बन जाता है। पेश है मिलन फिल्म का एक लोकप्रिय गीत, जिसे स्वर दिए हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म मिलन के लिए। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। जोड़ी लाइन मुंगेली, छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा बिलाई छत्तीसगढ़ से। चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीमुद्दीन हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहनवाज और इनके परिवारीजन। नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा। जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रॉजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। शुभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदुरकर। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, ऐशा सबीहानों से रेहान खान। श्रोताओं, बारिश की फुहारें केवल धरती

शक्ति को ही नहीं भिगोती बल्कि मन की वेड़ा के तारों को भी मधुर स्पंदन से भर देती हैं। इसी सुहाने एहसास के साथ अब समय है आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का। ये गीत प्रेम, उल्लास और वर्षा ऋतु की मनोहारी छटा को अत्यंत मधुरता के साथ अभिव्यक्त करता है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काला बाजार फिल्म के संगीत के साथ ही शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत था, एच डी बर्मन का संगीत निर्देशन। अब मुझे यानी अरविंद कुमार को इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आपसे थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस

मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते।
श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं।

मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 8:15 हुए हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देशगान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देशगान।

आगे कदम बढ़ानो है। जा फूलन की बगिया

अभी आप सुन रहे थे घनश्याम दास के स्वर में ये देशभक्ति परक रचना। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देशगान।

शांति माथुर की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अरविंद कुमार। श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे वर्ष 1959 की लोकप्रिय फिल्म काली टोपी लाल रुमाल की दुनिया में। इस फिल्म का निर्देशन तारा हरिश्चंद्र ने किया था। फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं चंद्रशेखर और शकीला। संगीत दिया है चित्रगुप्त ने और गीतों को शब्दों से सजाया है मजरूह सुल्तानपुरी ने। श्रोतो, ये फिल्म रोमांच, रहस्य, प्रेम और सामाजिक संदेश का सुंदर मेल है। कहानी एक ऐसे युवा की है जो अन्याय, छल कपट और अपराध के विरुद्ध संघर्ष करता है। परिस्थितियां उसे अनेक कठिन मोड़ों से गुजरती है और उसका एहसास, उसकी सच्चाई अंततः उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। इस संघर्ष में नायिका उसका विश्वास बनकर साथ देती है और दोनों का प्रेम कहानी को भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करता है। इन्हीं घटनाओं के बीच फिल्म में कुछ ऐसे गीत आते हैं जो

कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ दर्शकों के मन पर भी अमिट छाप छोड़ते हैं। कहानी के आरंभिक भाग में समाज की विषमता और जीवन की कठोर सच्चाइयों का चित्रण मिलता है। मेहनत करने वाले इंसान के जीवन में रोटी का महत्व क्या है, ये भाव अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उभरता है। इसी प्रसंग में प्रस्तुत है जीवन दर्शन से भरपूर ये गीत, जो कार्यक्रम का पहला गीत भी है।

श्रोताओं, पहले गीत ने जीवन की उस सच्चाई से परिचित कराया है हमें कि इंसान की अनेक इच्छाओं और संघर्षों के मूल में उसकी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। उधर कहानी आगे बढ़ती है, नायक अपराधियों की गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास करता है, उसकी मुलाकात नायिका से होती है। आरंभ में दोनों के बीच संकोच और अविश्वास रहता है, लेकिन धीरे धीरे विश्वास और अपनापन जन्म लेने लगता है। इसी बीच कहानी में ऐसा मोड़ आता है जब छल और धोखे का पर्दाफाश होने लगता है। झूठ और विश्वासघात से उपजा तनाव इस अगले गीत की पृष्ठभूमि बनाता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, कहानी और अधिक रोमांचक हो जाती है इस गीत के बाद। नायक पूरी तरह अपराधियों के षड्यंत्र को समझ चुका है। दूसरी ओर नायिका भी सच्चाई का साथ देने का निश्चय करती है। दोनों मिलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। पीछा, संघर्ष और रोमांच से भरे अनेक दृश्य कहानी को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। तनाव और संघर्ष के बीच भी अपनी मधुर उपस्थिति बनाए रखता है ये प्रेम। इसी भावभूमि पर फिल्म का ये लोकप्रिय गीत सुनाई देता है, जिसमें नायक अपने चंचल और स्नेहपूर्ण अंदाज में नायिका को संबोधित करती है।

आशु भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इस मधुर गीत के साथ फिल्म अपनी मंजिल तक पहुंचती है। सच्चाई की जीत होती है, अपराधियों को उनके कर्मों का दंड मिलता है और नायक नायिका का प्रेम विश्वास और सत्य की नींव पर एक सुखद परिणति प्राप्त करता है। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज आपने सुने काली टोपी लाल रुमाल फिल्म के कुछ गीत। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए।

अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने

0: न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की।

0: नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री कि ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी

0: स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard

सुमन कल्याणपुर और सखियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे साज और आवाज़ फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था कुमार बाराबंकवी ने और संगीत तैयार किया था नौशाद ने। आइए अब सुनते हैं क्षमा फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। विट्ठल भाई पटेल की रचना है, उषा खन्ना का संगीत निर्देशन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे शमा फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सावन भादों से। आवाज है आशा भोसले की, गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत सोनिक ओमी का।
1: बस बस बस बस

आशा भोसले के गाए सावन भादव फिल्म किसी गीत के साथ ही सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा आपसे थोड़ी ही देर में।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मानसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। IMD अपने मेशो स्केल और अर्ली

0: वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
1: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मानसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड कर देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस समय हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे। हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि ये इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छे से कर पा रहे हैं और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में और एक चीज है, ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सैटेलाइट राडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा फिर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सारे कम्बाइंड अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
0: जी डॉक्टर सूर्यप्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है?
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है

0: तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसीज में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी। और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे। तो जो भी बारिश का समय होता है और आप पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पे भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेज हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती हैं। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन्स होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारा जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते रहे, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट, जो आपको भी पता है कि एक घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर शेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस। और उसमें हमारा कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है, तो अगले 6 घंटा के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300

0: मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है 250 बहुत जगह में बारे उड़ीसा के इंटीरियर उड़ीसा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, ये जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा, तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशियंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसिडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हो, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में जैसे, उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है?
0: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर कभी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया ये एरिया में भी वो राडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने बताया नाव कास्टिंग, तो ये राडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं।

अपडेट करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैं बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है ये आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है। तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारे जानमान का

0: होता है उसमें बहुत सारे जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने और भी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है, वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है, काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क, राडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गाँव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्सा में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग, तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है, तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए, ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
0: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है, बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा आया हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग

0: कभी चलते। और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भा एरिया में भी चेतावनी दिए है। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा, और जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई में ना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है। और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है। जून में हमारा 38% कम हुआ था, तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, फर्स्ट जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15-25 दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी स्थिति आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे। जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह, वो देते रहेंगे। एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं, तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे, आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
2: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग आपने देखा होगा अभी जो पीछे राली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है, तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाएं। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं।

0: हैं, तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है, तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूदशा की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारी मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार,
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रूपक, नीलमणि गिरिराज गोवर्धन, आलेख देवकी नंदन कुमेरिया का है, प्रस्तुति SK शरद की है।

प्रस्तुत है आकाशवाणी मथुरा वृंदावन द्वारा तैयार ब्रज यात्रा रूपक माला का रूपक नीलमणि गिरिराज। शोध और आलेख है देवकी नंदन कुम्हेरिया का, निर्देशन डॉक्टर उपेंद्र रैना का और प्रस्तुति है श्री कृष्ण शरद की। तो सुनिए रूपक नीलमणि गिरिराज।

0: ब्रजमंडल के मुकुट मणि हैं विष्णु स्वरूप श्री गोवर्धन गिरिराज, जहां कलानिधि श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं द्वारा संतों, भक्तों और ब्रजवासियों को आनंदित किया।
1: श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रचलित परंपरागत इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा का शुभारंभ कर जहां देवराज इंद्र के दंभ का दमन किया, वहीं गिरिराज का सम्मान कर उन्हें अपना स्वरूप ही प्रदान किया।
0: गोवर्धन अर्थात गो संवर्धन ही इनका दिव्य रूप है। गो शब्द की अर्थ व्याप्ति में सुरभ, धरती, अदित, जगती, इला, वाणी, रश्मि, औषधि और इंद्रिय आदि शब्द समाहित होते हैं।
1: अतः गोवर्धन अपने संवर्धन अर्थ में जीव मात्र का पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, आरोग्य, सुख समृद्धि दाता एवं जीवन रस प्रदाता यानी प्राण संचरण कर्ता के सार्वभौम रूप में प्रतिष्ठित है।
0: गोवर्धन गिरिराज की महिमा का वर्णन पद्म पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद भागवत आदि ग्रंथों में विशद रूप में किया गया है।
1: इन्हें जहाँ विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के साकार रूप में माना गया है, वहीं भक्ति क्षेत्र में हरिदास वह यानी हरि भक्तों में श्रेष्ठ बताया गया है।
0: इस प्रकार श्री गोवर्धन गिरिराज भक्त और भगवान दोनों ही रूपों में प्रतिष्ठित हैं।
1: ब्रजवासियों का सख्य भाव और अपने इष्ट गिरिराज के प्रति अटूट निष्ठा का दृश्य हमें गोवर्धन पूजा के समय देखने को मिलता है।

0: गिरिराज महाराज जहाँ विराट स्वरूप और विश्व पूजित हैं, वहीं ये ब्रजवासियों के अपने लोक देवता हैं। लोक मान्यता है कि गिरिराज बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।
1: गर्ग संहिता में गिरिराज महाराज की उत्पत्ति और उनके ब्रज आगमन की कथा विस्तार से दी गई है।
0: भारत वर्ष के पश्चिम में सालमली द्वीप में पर्वतराज द्रोणाचल के आप पुत्र थे। एक बार भ्रमण करते हुए पुलस्त्य मुनि पर्वतराज के यहाँ जा पहुँचे। द्रोणाचल ने पुलस्त्य जी का भरपूर स्वागत किया, गिरिराज को आशीष दिलाया।
1: गिरिराज की सुंदर श्याम शिलाएं और मनमोहक कंदराओं को देख मुनिवर मुग्ध हो गए। सोचने लगे कि इन्हें काशी ले जाऊं और इनकी शांत कंदराओं में बैठकर साधना करूं।
0: मुनि ने अपनी इच्छा पर्वतराज के सामने रखी, जो पर्वतराज ने स्वीकार कर ली। किंतु गिरिराज ने पुलस्त्य जी से वचन ले लिया कि आप मुझे जहां उतार देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा।
1: मुनिवर योग बल से सूक्ष्म रूप में गिरिराज को हथेली पर रखकर चल दिए। जब ब्रज आया तो गिरिराज ने सोचा कि यहाँ तो श्री कृष्ण रूप में स्वयं विष्णु अवतार लेंगे, मैं यहीं रह जाऊं तो परमेश्वर के दर्शन से भी जीवन धन्य हो जाएगा।
0: ये सोचकर गिरिराज ने अपना भार बढ़ाया, जिससे पुलस्त्य जी ने उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या वंदन के उपरांत जब वो गिरिराज को उठाने लगे तो गिरिराज नहीं उठे। कहने लगे, प्रभु आपके वचन का पालन करते हुए अब मैं यही रहूंगा।
1: मुनि के बार बार आग्रह करने पर भी जब गिरिराज नहीं उठे तो कुपित होकर पुलस्त्य जी ने शाप दे दिया। बोले, रे अभिमानी, जा तू अब तिल तिल कर भूमि में धसता चल।

0: चला जाएगा।
1: श्राप सुनते ही भयभीत होकर गिरिराज रुदन करने लगे। बोले, मुनिवर, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं माता पिता को छोड़ आया, फिर भी आप दास पर कुपित क्यों हो गए? मैंने तो आपको आपका वचन ही स्मरण कराया था।
0: गिरिराज की वाणी सुनकर मुनिवर द्रवित हो गए। बोले, वत्स, मेरा श्राप तो खाली नहीं जाएगा, किंतु शीघ्र ही यहाँ श्री कृष्ण रूप में अवतार होगा। वो तुम्हारा पूजन करेंगे, ब्रजवासियों से तुम्हें पुजवाएंगे और तुम विष्णु के रूप में जग वंदित हो जाओगे।
1: ये कहकर मुनि काशी चले गए और गिरिराज परमेश्वर के अवतार लेने की प्रतीक्षा करने लगे।
0: और अंत में वो शुभ दिन भी आया जब अजन्मा ने कंस के कारागृह में जन्म लेकर आतंक की छाती पर सत्य की ध्वजा फहरा दी। वो जन्मे तो मथुरा में थे, किंतु उनका लालन पालन हुआ गोकुल में जसोदा की गोद में।
1: श्री कृष्ण ने बालपन में ही खेल खेल में पूतना, अघासुर, बकासुर, सकटासुर, धेनुकासुर जैसे दैत्यों का संहार कर दिया, तो गोप समाज उन्हें चमत्कारी बालक जानकर उनकी बातों पर ध्यान देने लगा।
0: ब्रज में इंद्र पूजा की परंपरागत तैयारी हो रही थी।
1: श्री कृष्ण नंद बाबा से बोले, बाबा, आप इंद्र के स्थान पर गिरिराज महाराज की पूजा किया करो ना।
0: सुनकर नंद बाबा समझाने लगे, लाला, देवों के प्रति ऐसा नहीं कहा करते।
1: श्री कृष्ण बोले, बाबा, हमारे देव तो गोवर्धन गिरिराज हैं। गिरिराज बाबा गायों को हरी हरी घास और गुणकारक वनस्पति देते हैं, जिन्हें खाकर गाय स्वादिष्ट दूध देती है। दही माखन खाने और दुग्ध पीने से ग्वाल गोप बलवान होते हैं।
0: नंद बाबा ने शंका प्रकट की, यदि इंद्र देवता कुपित हो गए तो?
1: तो श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि राज महाराज पर भरोसा करो, वे रक्षा करेंगे।
0: इस प्रकार इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की तैयारियां होने लगी। ब्रजवासी उल्लास में भर गए, वे नाचने लगे, गाने लगे।

ब्रजवासियों का नाचना गाना और प्रसन्न होना, ये सब इंद्र को नहीं भाया। देवराज इंद्र इसको अपना अपमान समझ बैठे। उन्होंने तत्काल मेघ मंडल को बुलाकर ब्रज को डुबाने का आदेश दे दिया। घनघोर वर्षा होने लगी। इंद्र के इस प्रकोप से ब्रज में हाहाकार मच गया। बचाओ बचाओ की ध्वनियां आने लगी। ब्रजवासियों को दुखी देख श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान उठाया और अपनी उंगली पर धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर जल सोखने को भेज दिया। ये देख गोप ग्वाल सभी श्री कृष्ण का गुणगान कर नाचने लगे, गाने लगे।

0: देवराज इंद्र ने जब ब्रजवासियों को आनंद में नाचते गाते हुए देखा तो उसे भारी आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि कृष्ण साधारण ग्वाला नहीं अपितु अवतारी पुरुष हैं।
1: वो भयभीत होकर ऐरावत हाथी, सुरभि गाय और श्यामकरण घोड़े को साथ ले श्री कृष्ण की शरण में पहुंचकर त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा।
0: इंद्र ने श्री कृष्ण का पूजन कर उन्हें गोपालक गो ग्वाल रक्षक रूप में गोविंद नाम प्रदान किया और नंदलाल से अभयदान पा अपने लोक को चले गए।
1: और गिरिराज 7 दिन और 7 रात तक श्री कृष्ण की उंगली पर विराजमान रहने से हो गए विष्णु स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ।
0: श्री गोवर्धन नाथ अनाथों के नाथ, जिसने जो चाहा उसको भरपूर दिया, कामना रहित भक्त को और अधिक दिया। ऐसे औघड़ दानी जो देते ही नहीं अघाते, दोनों हाथों से लुटाते भी हैं।
1: श्री कृष्ण द्वारा प्रारंभ की गई गोवर्धन पूजा भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में प्रारंभ हो गई।
0: इसका प्रमाण है दक्षिण पूर्वी एशिया की प्राचीन मूर्ति कला में श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण का अंकन।
1: चंपा से मिले सम्राट इंद्रवर्धन के अभिलेख में विष्णु के गोवर्धन पर्वत उठाने का संकेत है।
0: कंबुज के सुप्रसिद्ध अंकोरबाट मंदिर के मंडप में गोवर्धनधारी का अंकन है। 11वीं शताब्दी में बसे अंकोरबट थोक में श्री कृष्ण लीलाओं के अनेक दृश्य हैं, जिनमें गोवर्धन लीला बहुत प्रमुख है।
1: मॉरिशस आदि देशों में तो कृषि देवता के रूप में गोवर्धन पूजा का पर्व समारोह पूर्वक मनाया जाता है।
0: श्री गिरिराज की दिव्य श्याम शिलाओं में ऐरावत हाथी, गाय, गोवत्स, ग्वाल, गोपाद के चरण चिन्ह आज भी स्थान स्थान पर देखने को मिलते हैं।
1: साधु संत और साधकों ने गिरिराज कंदराव में बैठकर परब्रह्म की प्राप्ति की है, तो आचार्यों और भक्त कवियों ने इनकी महिमा का गुणगान कर जीवन को धन्य माना है।
0: 15वीं शताब्दी में कर्नाटक प्रदेश से पधारे भक्त प्रवर नारायण भट्ट ने ब्रज में आकर श्री गोवर्धन महाराज की वंदना करते हुए कहा, गोवर्धन गिरे तुभ्यम गोपा नाम सर्व रक्षक।
1: पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्री गिरिराज को ही अपना सर्वस्व मानते हुए उनके श्रृंगार व स्वरूप का जो दिव्य वर्णन किया है, मधुराष्टकम के रूप में जन जन में व्याप्त है।

0: माधु गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य जीव गोस्वामी ने श्री कृष्ण भक्ति और ब्रज रस से ओतप्रोत जितना भी साहित्य संस्कृत और बंगला भाषा में रचा है वो राधा रानी की कृपा से राधा कुंड के तट पर ही लिखा है।
1: सभी संप्रदाय आचार्यों ने ब्रज की सहज सरल ग्राम संस्कृति को परम वैभव प्रदान कर उसे विश्व के दृश्य पटल पर स्थापित किया है। सभी के प्रेरणा स्रोत हैं श्री नीलमणि गिरिराज।
0: मथुरा पुरी से 21 किलोमीटर पश्चिम में अलवर मार्ग पर गोवर्धन नामक कस्बा है जो गिरिराज पर्वत का मध्यस्थल है। ये मानसी गंगा क्षेत्र कहलाता है।
1: वर्तमान में गोवर्धन पर्वत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 11 किलोमीटर है जो सप्तकोशी परिक्रमा की परिधि में है।
0: इसके दक्षिणी किनारे पर भरतपुर राजस्थान का पूंछरी गांव है। कुछ क्षेत्र होने से यहां गिरिराज की ऊंचाई सर्वाधिक है।
1: उत्तरी छोर पर है राधा रानी की पावन भूमि राधा कुंड।

0: प्रिया प्रियतम के युगल कुंड हैं।
1: गर्ग संहिता में गिरिराज महाराज का रूप मयूर के समान बताया गया है, जिसमें राधा कुंड चौंच, मानसी गंगा उदर, आने और जतिपुरा दोनों चरण और पूछरी को पुच्छ बताया गया है।
0: आचार्यों की मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज का स्वरूप ठीक उसी प्रकार है जैसे गीता जी के 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण ने परमात्मा के विराट स्वरूप को कहा है,
1: अर्थात जहाँ दंडवत करो वहीं चरण और जहाँ भोग धराओ वहीं है श्रीमुख।
0: इसी भाव को लेकर स्थान स्थान पर श्री गिरिराज का पूजन किया जाता है। पूजा स्थल को मुखारविंद कहा जाता है।
1: ये गोवर्धन धाम चारों धामों से निराला है। चारों धाम की यात्रा करने वाले भक्तजन अपनी यात्रा की पूर्णता श्री गोवर्धन धाम की परिक्रमा करने के पश्चात ही मानते हैं। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज, सब देवों के मुकुट मणि नील मणि गिरिराज।
0: आइए अब हम आपको गिरिराज परिक्रमा में ले चलते हैं।
1: परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले परम पावन मानसी गंगा का आचमन करते हैं और परिक्रमा का संकल्प लेते हैं।
0: यहाँ गोवर्धन पर्वत शिलाएं इतनी नीची हैं कि वो मानसी गंगा के जल में होकर जाती हैं। इसीलिए मानसी गंगा को श्री गिरिराज की गोद में विराजमान बताया है।
1: मानसी गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है श्री गिरिराज मुकुट का प्राचीन मंदिर। आइए आनंद लें एक इसी प्रकार के छंद का जिसमें मानसी गंगा की झांकी का वर्णन है।
2: मानसी गंगा विराजत अंग में देखित रंग मिले सुख भारो, पावन उच्च विशाल मनोहर पास में श्री हरि ठाकुर द्वारो। रंग उमंग अनंग को नासक ध्यान धरे चकलेश्वर प्यारो, और देवन कहू जो देव बनियो अस देवता है गिरिराज हमारो।
0: मानसी गंगा के घाट और पुर्जों का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा मान सिंह ने कराया था। इसके दक्षिणी तट पर वज्रनाथ द्वारा स्थापित श्री हरदेव जी का भव्य दिव्य मंदिर है, जिसका पुनः निर्माण राजा मान सिंह के पिता राजा भगवान दास ने करवाया था।
1: और उत्तरी तट पर है ब्रज के प्रसिद्ध महादेव चक्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। इसके प्रांगण में है महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की बैठक और माध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य सनातन गोस्वामी की भजन कुटी।
0: मानसी गंगा के चारों ओर भव्य मंदिर, पूर्व भरतपुर राज्य की कलात्मक छत्रियां और सिद्ध महात्माओं की ऐतिहासिक समाधियां आध्यात्मिकता लिए हुए मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं।
1: मानसी गंगा का आचमन करने के बाद भक्तजन गिरिराज महाराज की जय जयकार करते हुए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं।

0: परिक्रमा सप्तकोश में कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, किंतु जहाँ से प्रारंभ हो वही पूर्ण होती है।
1: भक्तजन परिक्रमा में गिरिराज महाराज की महिमा के गान, कीर्तन और भजन गाते रहते हैं।
0: परिक्रमा पैदल, दूध धार के साथ और दंडवत करते हुए भी देते हैं।
1: और अब हम आ गए हैं दान घाटी पर। यहाँ श्री कृष्ण ग्वाल वालों को साथ लेकर बरसाने से मथुरा दधि माखन ले जाने वाली गोपियों से दान लिया करते थे।
0: यहाँ गिरिराज महाराज का दिव्य और भव्य मंदिर है। इसके उच्च शिखर पर स्वर्ण कलश शोभायमान है। सभागार में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कलात्मक चित्रकारी है।
1: दान घाटी के दर्शन कर परिक्रमार्थी दक्षिण दिशा में गिर तलहटी में भजन गाते हुए आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन से आनोर गांव 3 किलोमीटर है। बीच मार्ग में दाईं ओर श्री गोवर्धन पर्वत है तो बाईं ओर मंदिर और देवालय।
0: आनोर गांव ब्रज का पुराना गांव है। ब्रज आगमन पर

0: सर्वप्रथम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यहीं सद्दू पांडे के यहाँ रुके थे।
1: यहीं गिरिराज तलहटी में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ था। मंदिर निर्माण से पहले श्रीनाथ जी यहीं एक कच्चे मकान में, जिसे मड़ैया कहा जाता है, निवास किया करते थे।
0: यहीं पर बीच गांव में दाऊजी महाराज का वो प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण बौद्ध कालीन बताया जाता है।
1: मंदिर के सामने संकर्षण कुंड है जिसके उत्तरी तट पर भगवान श्रीनाथ जी के प्रथम कीर्तनकार महात्मा कुम्बनदास की समाधि है। शुद्ध बिहारी जी का प्राचीन मंदिर है। आने और गांव का नाम सद्दू पांडी की बेटी नरो के नाम पर है जो श्रीनाथ जी की भक्त थी।
0: आनेर से आगे गोविंद कुंड नामक वो कुंड है जहां इंद्र ने गोविंद अभिषेक किया था और यही भक्त रस खान कुटिया बनाकर निवास करते थे।
1: गोविंद घाट के बुर्जों का निर्माण मराठा सरदारों ने कराया था।
0: इससे आगे सप्त ऋषियों की सात गुफाएं हैं जिनमें बैठकर वो तपस्या किया करते थे।
1: यहीं पर लुकलुक दाऊ जी का वो मनोहारी मंदिर है जहां छुपकर बलदेव जी ने चंद्र सरोवर पर हुए महाराज को देखा था। हजारों साल पूर्व बना ये मंदिर आज भी नवीन सा लगता है।
0: और इससे आगे ही प्रारंभ हो जाता है राजस्थान का पुच्छ क्षेत्र पूछरी। भक्तजन इसमें प्रवेश करते ही पूछरी के लोठा की जय जयकार करने लगते हैं।
2: पूछरी के लोठा की जय हो प्यारे।
1: उल्लास में भरकर भक्तजन गाने लगते हैं।
2: धन्य धन्य रे पूछरी के लोठा, ओ धन्य धन्य पूछरी के लोठा, अन्न काहे ना पानी पीवे फिरहू पड़ोस लोटा। धन्य धन्य पूछरी के लोठा, धन्य धन्य पूछरी के लोठा।
0: पूछरी में गिरिराज पर्वत के नीचे अप्सरा कुंड और नबल कुंड नाम से दो सुंदर कुंड हैं। यहीं नबल बिहारी जी का मंदिर और बाबा रामदास की गुफा भी है।
1: यहीं अष्टशाब कवि चीत स्वामी की कुटी परिक्रमा में ही पूछरी लोठा का प्राचीन मंदिर है।
0: गिरिराज पर्वत का छोर होने से परिक्रमा उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। गिरिराज तरेटी में एरावत कुंड, गोविंद स्वामी की कदम खंडी, परमानंद दास की भजन कुटी आदि अनेक सांस्कृतिक स्थल हैं।
1: और यही है वो 56 भोग स्थल जहां बल्लभ कुल की ब्रज यात्रा के समय श्री गिरिराज महाराज के सम्मुख सैकड़ों मन सामग्री का भोग धराया जाता है।
0: यहां से आगे आती है वैष्णवपुरी जतिपुरा। यही गोवर्धन शिखर पर श्रीनाथ जी का वो भव्य मंदिर है जो 15वीं शताब्दी का चमत्कारी निर्माण कहलाता है।
1: यहीं से अष्टछाप कवियों की स्वर लहरी ने संपूर्ण भारत को भक्ति रस से आप्लावित कर दिया। यहीं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने 7 पुत्रों को 7 स्वरूप प्रदान कर सप्त पीठों की स्थापना की जो अब विभिन्न प्रदेशों में विद्यमान हैं।
0: भगवान श्रीनाथ जी संवत 1726 में यहाँ से प्रस्थान कर गए और मेवाड़ चले गए। वो अब नाथ द्वारा में विराज रहे हैं,
1: किंतु उनका नित्य संबंध आज भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। नाथद्वारा में संध्या आरती के पश्चात उनकी गोवर्धन यात्रा के लिए रथ सजाया जाता है तो यहाँ उनके शयन हेतु चंदन का पलंग बिछाया जाता है।
0: पर्वत के नीचे वो सुंदर शिला है जिसका वर्णन पुष्टिमार कीर्तन ग्रंथों में सुंदर शिला खेलन की ठौर कहकर किया है। आजकल इस शिला का मुखारबिंद रूप में पूजन होता है।
1: सुंदर शिला के दक्षिणी भाग में उस दिव्य गुफा का द्वार था जिसमें चतुर्भुज दास के साथ गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने घुसकर लीला प्रवेश किया था।
0: इस द्वार को अब चबूतरा बनाकर ढक दिया गया है।
1: जतिपुरा में मोती महल के पश्चिम में वो चमत्कारी रुद्र कुंड है जिसमें कभी जल नहीं ठहरता, किंतु इसी कुंड में वो जल घड़ा है जिसमें सदैव अतः जल रहता है।
0: जतिपुरा से गोवर्धन तक 3 किलोमीटर मार्ग में श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े हुए अनेक प्राचीन स्थल हैं, जिनमें बिलछू कुंड नामक स्थल भी है जो ठाकुर हरदेव जी का प्राकट्य स्थल और भगवान श्रीनाथ जी के अधिकारी श्री कृष्णदास का निवास स्थल है।
1: आगे दंडोता हनुमान को ढोक लगाकर गोवर्धन नगर में प्रवेश करते हैं जो मानसी गंगा का पश्चिमी क्षेत्र है।
0: पहले यहाँ वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े और प्राचीन मंदिर थे, किंतु अब

0: उनका स्थान स्वरूप बदल गया है।
1: इंद्र के ऐरावत हाथी की स्मृति में हाथी दरवाजा यहाँ का मुख्य मोहल्ला है। इसके आगे है नंददास द्वार।
0: गोवर्धन कस्बा से 3 किलोमीटर दूर राधा कुंड नामक तीर्थ है। इस बीच पग पग पर मंदिर व उद्धव जी के नाम पर प्राचीन उद्धव कुंड है।
1: तीर्थ को ब्रज के अंचल में पूर्वांचल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये माधव गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। पूर्वांचल से आए संत भक्त और आचार्यों के अपने अपने ठाकुर और अपने अपने मंदिर हैं।
0: यहाँ ब्रजवासियों के अतिरिक्त भारी संख्या में मणिपुर, आसाम और बंगाल के कृष्ण भक्त निवास करते हैं।
1: कस्बा के मध्य में श्री राधा और श्री कृष्ण के नाम से युगल कुंड है। कृष्ण कुंड के मध्य में है वज्रनाभ का कुंड।
0: इन कुंडों को अष्टकोण में घेरे हुए अष्ट सखियों के नाम से अलग अलग 8 कुंड थे, जिनमें ललिता कुंड को छोड़कर शेष 7 कुंड लुप्त प्राय हैं।
1: यहाँ कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई स्नान पर्व होता है, जिसमें पुत्र कामना से दंपत्ति रात्रि 12 बजे स्नान करते हैं।
0: लाखों की संख्या में स्नान करने वालों को ध्यान में रखकर ये पर्व 2 दिन का होता है।
1: राधा कुंड से 1 किलोमीटर दूर श्री राधा रानी की नानी मुखरा रानी का गांव है मुखराई। चुरकुला नृत्य यहीं से प्रारंभ हुआ था।
0: राधा कुंड से 1 किलोमीटर चलने पर कुसुम सरोवर क्षेत्र आता है, जहां ग्वालियर राज्य का प्राचीन मंदिर है।
1: यहीं वो पावन कुसुम सरोवर जहां राधा रानी सांझी के लिए फूल बीनने आती थी।
0: यहीं श्री कृष्ण के साथी उद्धव जी लता रूप में विराजते हैं। श्रीमद् भागवत का प्राकट्य स्थल भी कुसुम सरोवर है।
1: भक्तराज नारद जी का मंदिर भी यहीं है और यहीं निवास करते थे ब्रज रस रसिक नारायण स्वामी, जिनका ब्रज के रासलीला मंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
0: सरोवर के पश्चिमी तट पर भरतपुर के प्रतापी राजा सूरजबल की भव्य और कलात्मक समाधि है, जो वास्तुकला और चित्रकला में अद्वितीय है।
1: सरोवर के उत्तरी तट पर दिल्ली विजेता इतिहास पुरुष महाराजा जवाहर सिंह की समाधि है, किंतु वो पूर्ण नहीं है।
0: कुसुम सरोवर से आगे ग्वाल पोखरा, श्याम कुटीर आदि श्री कृष्ण की निकुंज लीलाओं से जुड़े हुए परम रमणीय स्थल हैं।
1: आगे चलकर किलोल कुंड नामक प्राचीन स्थल है और हरि गोकुल आदि श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सांस्कृतिक स्थल हैं। श्री किशोरी श्याम जी, लक्ष्मी नारायण जी आदि प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर हम मानसी गंगा के तट पर आ गए हैं।
0: ऐसी आध्यात्मिक भूमि जहाँ स्वयं परमेश्वर ने बाल रूप धारण कर विभिन्न लीलाएं की हैं, जहाँ साक्षात विष्णु स्वरूप गोवर्धन विराजमान है, ऐसी पावन भूमि में विराजित नीलमणि गिरिराज के श्री चरणों में बारंबार नमन, शत शत वंदन, शत शत वंदन।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, नीलमणि गिरिराज गोवर्धन, आलेख देवकी नंदन कुम्हेरिया का था, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गजाधर राव तैलंग का ख्याल गायन, राग है कौन सी कान्हड़ा।

0: अभी आप गजाधर राव तैलंग का ख्याल गायन सुन रहे थे। राग था कौसी कांडा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त

कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।